मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में
1: दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष

0: कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। आज का चिंतन। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की तरफ ले जाता है। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। चिंतन के बाद अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भगवान शिव को भोले भंडारी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे अत्यंत सीधे, सरल और अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भोले का अर्थ है सरल और निष्कपट। भंडारी का अर्थ है सुख समृद्धि और आशीर्वाद का भंडार भरने वाले।

सनातन धर्म और पुराणों में सदाशिव को ही संपूर्ण सृष्टि का आदि कारण उत्पन्न करने वाला यानी रचयिता और संहारक माना है। सदाशिव वो सर्वोच्च निराकार और अनादि परब्रह्मा है जो अपनी शक्ति के साथ मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में उसे अपने में ही विलीन कर लेते हैं।

भोलेनाथ अपने भक्तों के दिल का भोलापन देखते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति या अतीत नहीं। चाहे देवता हो, मानव हो या असुर, जो भी सच्ची निष्ठा से उनकी शरण में आता है, वे उसे मनचाहा वरदान देते हैं। शिवजी छल कपट से कोसों दूर हैं। भस्मासुर जैसे असुरों को भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वरदान दिया।

भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वे अपने भक्तों को सब कुछ दान कर देते हैं और स्वयं फकीर बने रहते हैं। उनके दरबार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता, वो अपने भक्तों का भंडार हमेशा भरते हैं।

आप सुन रहे थे भक्ति गीतों की दैनिक प्रस्तुति वंदना का प्रसारण। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण।

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में आपने सुना श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से लीजिए सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बात हम आज कर करेंगे बागों में उचित प्रबंधन, इसके बारे में। किसान भाइयों, जो भाई बाग लाए हैं कितने कितने तो छोटा मोटा प्रशिक्षण जरूर ले हुए हैं, और जो प्रशिक्षण नहीं लेंदे वो कितने कितने फिर दिक्कत में आ जाए हैं किसी भी मौके पर। तो प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है, कितने तो कोई जानकारी ले लें, अपना कोई जानकार कर रहा है उस पर जानकारी ले लें, सरकार की तरफ तो प्रशिक्षण दिया जा वो ले लें, कोई तजर्बा ज़रूर होना चाहिए ताकि आगे जब हम काम करें तो कोई दिक्कत फिर हमने ना आवे। तो जो भाई बाग ला रहे हैं वो उचित प्रबंधन में किस किस चीज़ का ध्यान करें। एक तो मृदा का जो स्वास्थ्य है ना, जो जमीन की जो सेहत है उसका ध्यान करना है। नमी क्यूकर बनी रहे इसके खेत में, इस चीज़ का ध्यान करना। खरपतवार नियंत्रण किस तरीके तो उसके है, इस चीज़ का भी ध्यान करना है। और मौसम के हिसाब से कौन सा प्रबंधन उचित से, ये कुछ बात ध्यान करने की है, तो ये ध्यान करनी है। नमी बनाने खातर मल्चिंग करनी पड़े है, सूखी घास आसपास लगा के वो बिछा कर रखनी पड़े है ताकि नीचे नमी रही रहे। खाली जगह जो बाग के बीच में है उस जगह पर कोई दलहनी फसल उगा लें, कोई इस तरह की फसल उगा लें जो घास फूस ने नष्ट करवा दे और बाग का नुकसान ना करे, और जो जैविक कार्बन है वह जमीन में बढ़ जाए। फिर बात आओ है सिंचाई की। सिंचाई में टपका सिंचाई विधि बाग की खातर बहुत बढ़िया बताई गई है। जो भाई टपका सिंचाई विधि का प्रयोग कर रहे हैं उनके बाग न्यारे रहे हैं। थोड़ा पानी लग गया है, कुछ खुराक देनी है तो वो भी उससे महके दी जाए, और ज़्यादा सा इतना कोई घना भी सा खर्चा नहीं आता। अकबे को अनाप शनाप इतना खर्चा हो है कि हर एक भाई इस काम ने नहीं कर सकता। कुछ खर्च थोड़ा बहुत आएगा लेकिन अग खतर सुख बतेरा हो जाएगा। तो जो टपका सिंचाई विधि है इसके यंत्र ले आकर यो भी काम जिन भाइयों ने करना है वो कर सके हैं। खेत में नमी बनी रहेगी, खरपतवार कम होंगे, पानी थोड़ा खर्चा होगा, कोई खुराक देनी है तो वो उस पानी के मुँह कह दी जाएगी, यो आसान काम हो जाएगा। फिर बात आओ है जल निकासी की। बारिश का ज़्यादा पानी हो जाए है या फिर कोई इस तरह पानी आ जाए है अचानक, तो उस पानी की निकासी का भी प्रबंध करना है। बाग में घना पानी खड़ा रहना भी ठीक नहीं है। जब घना पानी खड़ा हो गया तो फिर पौधों का नुकसान होगा, कुछ वो गलना शुरू कर देंगे, छोटे पौधे हैं उनका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मौसम के हिसाब की भी देख रेख करनी है। इबाल का मौसम देखा तो चमासे का मौसम आवा है। इस मौसम पर देखो बारिश होने जाएगी लेकिन फिर भी हमने ये ध्यान करना है कि ज़्यादा पानी खड़ा ना होना चाहिए। पानी तो आ जाओ कोई बात नहीं है लेकिन ज़्यादा पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें खरपतवार ज़्यादा उगेंगे। जैसे ही खरपतवार उगे हैं तो हमने तैयार रहना चाहिए, उस टाइम वो खरपतवार उसके निकाल दें, बल्कि और अच्छी बढ़वार लेंगे। तो बारिश का पानी तो बहुत बढ़िया है पानी, वो जब मिलेगा हमारे बाग ने तो मजबूत बनेगा बाग, इसी बात नहीं है। लेकिन यह बात साथ में ज़रूर है किसान भाइयों के पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए और खरपतवार ज़्यादा नहीं होना।

0: मिट्टी की जांच करवा लें, नाइट्रोजन और पोटास की कुछ उसमें स्थिति है वो जांच करवा लें, पोषक तत्व जो ज़रूरत है उसके हिसाब के खेत में जरूर दें। ये कुछ बात ध्यान करने की थी कि भाई जिन भाइयों ने बाग ला रखा है वो न्यू देखें अगर हमारा बाग किस हिसाब से चल रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कि के और करने की इसमें ज़रूरत है, वो सारा बात ध्यान करनी पड़ेगी। ये प्रबंधन माँ हैं। बाकी तो न्यू है कि मुख्य बात यह आई है कि खरपतवार ना होने दें, टपका सिंचाई भी देते पानी दें, ज़्यादा पानी हो गया तो निकासी का प्रबंध करें, और किसी भी टाइम ऐसा मौका आ जाए कि पानी की कमी है तो उस टाइम पर पानी कितने कितने तो कोशिश करें कि खेत में पानी जरूर आ जाए, पानी की कमी भी ना रहे।
1: ये थी कृषि की बातें, आपने सुनी आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की प्रतीक्षा करें।

0: प्रचंड चक्रवात वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान कर्नाटक उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां उत्तर प्रदेशे पंजाबे चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की

आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 12:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम। हमारी दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरे लेकर हाजिर होंगे प्रातः 7:35 पर।

युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम हेलो जीनियस। खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आज चर्चा का विषय रहेगा रहे कलर भूमि सुधार। शाम 6:20 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें डॉक्टर आत्मन पुनिया के साथ बातचीत का विषय रहेगा अरंड की काश्त।

और ये हैं संगीत के कुछ आकर्षण। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:25 पर। प्रातः 7:15 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दीपा शर्मा का सितार पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। इन्हीं का बजाया राग यमन आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:00।

लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर आज कलाकार होंगी पासी नैयर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:00।

network. फिल्म संगीत कार्यक्रम आप दिन में 1:10 पर और शाम 7:30 पर भी सुन सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुने दीपा शर्मा का सितार पर बजाया राग गुजरी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दीपा शर्मा का सितार पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। ये प्रसारण आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है दैनिक आयोजन सुबह सवेरे।

नमस्कार हमारे सभी सुनने वालों को। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपके साथी उषा मलिक। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और ज़रूर आपके यहाँ मौसम बदला होगा, बारिश हुई होगी तो उसका आनंद आप ले रहे होंगे और कहीं कहीं चिपचिपी गर्मी, उमस भरी गर्मी भी होगी तो उससे भी बहुत से हमारे श्रोता बेहाल होंगे। भाई मौसम है, बदलता रहता है, कभी बारिश है कभी गर्मी है, तो सब मौसमों में उसी के अनुसार हमें अपना जीवन जीना होता है और उसी के अनुसार हमें समय बिताना होता है। और श्रोताओं देखिए, गर्मी है तो अब बारिशों का मौसम भी आएगा, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी बारिश भी होगी। और इस बारिश के मौसम में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। और इसी उद्देश्य को लेकर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम मनाते हैं वन महोत्सव। हर साल लाखों भारतीय एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं, पेड़ लगाना और हरित भविष्य में योगदान देना। वन महोत्सव के नाम से जाना जाने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसे वन उत्सव या वृक्षों का त्यौहार भी हम कह सकते हैं, भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण उत्सवों में से एक आज बन चुका है। यह सिर्फ वृक्षारोपण अभियान से कहीं अधिक है, बल्कि यह जैव विविधता को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल संरक्षण और आजीविका को सहारा देने में वनों की भूमिका को याद दिलाता है। भारत को बढ़ते तापमान, वायु प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और भूमि क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में वन महोत्सव 2026 व्यक्तियों, स्कूलों, व्यवसायों, समुदायों के लिए आगे आने और रचनात्मक और सार्थक कार्रवाई करने का एक खूबसूरत अवसर देता है, जो समय की मांग भी है। इस महोत्सव की शुरुआत श्रोताओं सर्वप्रथम 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री K.M. मुंशी द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसे बनाए रखने में वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाता है। पिछले 76 वर्षों में वृक्षारोपण जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली के लिए सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया है वन महोत्सव, जो लाखों लोगों को हरित आवरण बढ़ाने, अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। तो श्रोताओं उम्मीद हमें यही है कि आप भी कोई ना कोई पेड़ पौधा ज़रूर लगाएंगे इस बारिश के मौसम में। पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम

करने में मदद मिलती है। वन पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और अनगिनत अन्य प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं जो जीवित रहने के लिए स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को स्थिर रखती हैं, कटाव को कम करती हैं, भूमि की उत्पादकता में सुधार करती हैं और पेड़ हवा से प्रदूषकों को छानते हैं, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करते हैं और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देते हैं। तो श्रोताओं, आप और हम सभी जानते हैं कि पेड़ों के कितने फायदे हैं, तो ज़रूर इस मौसम में कुछ ना कुछ पेड़ आप ज़रूर लगाइए। घर में यदि किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसके नाम पर, अपनी माँ के नाम पर या फिर अपने जन्मदिवस पर, बस एक बहाना होता है, लेकिन इस बहाने से हम हरियाली को बढ़ाते हैं और इस जो परिवर्तनशील मौसम है, जो लगातार गर्मी बढ़ रही है और लगातार जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं, कभी बिना मौसम की बारिश है, कभी सूखा है, कभी तेज़ धूल और आंधियां हैं या अन्य जो भी मार हम झेल रहे हैं प्रकृति की, उसको सुखद बनाने में अपना योगदान हम दे पाएंगे।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

श्रोताओं, बरसात का मौसम आने ही वाला है और कई जगह तो खूब बरसातें हो भी रही हैं, और ऐसे में चारों तरफ पानी भी भरेगा, मच्छर भी पनपेंगे और कई तरह के बुखार जो हैं, मच्छर जनित बुखार जो हैं, वो होने की संभावना फिर हमें बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्यों ना डेंगू को रोकें, जुलाई को डेंगू रोधी महीने के रूप में हम मनाएं। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और यह मच्छर दिन में काटता है और रुके हुए साफ पानी में पनपता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह में किसी भी दिन को सूखा दिवस के रूप में हम मना सकते हैं सप्ताह में, और पानी के भरे जो बर्तन हैं, कूलर है, टंकी, फ्रिज के पीछे बनी हुई ट्रे, गमले के नीचे रखी हुई ट्रे खाली करके इन सभी को कम से कम 24 घंटे तक सुखाएं ताकि मच्छर के अंडे और लार्वा मर जाएं। तो सप्ताह में किसी एक दिन आप ऐसा प्रयास ज़रूर करें। और डेंगू के लक्षणों की बात करें तो अकस्मात तेज़ बुखार का होना, अचानक तेज़ सिरदर्द होना, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना जो कि आंखों को घुमाने से बढ़ता है। तो आप बरसात के इस मौसम में डेंगू से बचाव के सभी तरीके अपनाएं, और अपील हमारी यही है कि घरों के आसपास गड्ढों में मिट्टी भरवा दें। ये ना सोचें कि भाई ये तो हमारे घर से बाहर की बात है, वो आपको भी प्रभावित कर सकती है। वहाँ जब मच्छर होंगे तो आपके घर के अंदर भी वो आएंगे और आपको काटेंगे, तो किसी न किसी तरह के बुखार से आप ग्रसित हो सकते हैं। छतों पर रखी पानी की टंकियों का जो ढक्कन है वो बंद रखें और कपड़ा बांध कर रखें, और मानसून की बरसात शुरू होने से पहले ही छत पर जो बेकार प्लास्टिक का सामान है, बर्तन कोई पड़ा है, पुराने टायर पड़े हैं, नारियल की खोल आदि हम फेंक देते हैं, उन्हें साफ कर लें। और हर किसी न किसी रविवार को या किसी न किसी दिन आप सप्ताह में अपने ऑफिस में भी सूखा दिवस मना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही अपना योगदान दें, ऑफिस जो है वहाँ भी आप साफ़ सफाई का थोड़ा सा काम कर सकते हैं। घर के सभी सदस्य जो है वो पूरी बाजू के कपड़े पहने मच्छर केंद्रों में, और मच्छर रोधी कोई दवा या क्रीम का उपयोग करें। इसके अलावा कीटनाशक दवाई से उपचारित मच्छरदानी का उपयोग किया जा सकता है, और बुखार आने पर अपने डॉक्टर खुद ना बने, जैसा कि अक्सर हम भारतीय करते हैं। तो बुखार आए तो आप अपने डॉक्टर के पास लगातार जल्दी ही जो है, जो आपके नज़दीक डॉक्टर हैं, कोई भी हॉस्पिटल है उसमें पहुँचें और अपने खून की जांच वगैरह जो भी डॉक्टर आपको बोलते हैं वो ज़रूर करवाएं। और मुफ्त जांच सुविधाएं भी सरकारी उपलब्ध हैं। 27 सरकारी डेंगू जांच प्रयोगशाला में मुफ्त डेंगू की जांच जो है वो उपलब्ध हैं, और ये सभी प्रयोगशालाएं राज्य के प्रत्येक ज़िले के नागरिक अस्पताल में हैं, जो भी सिविल हॉस्पिटल है आपके शहर में वहाँ, और सभी जो प्राइवेट लैब हैं उनको एलाइजा आधारित NS1 और IgM डेंगू टेस्ट के 600 रुपये में करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे अधिक कोई आपसे मांगता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। और इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अपने ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या ज़िला मलेरिया अधिकारी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो हरियाणा वासियों के लिए राज्य के प्रत्येक ज़िले के नागरिक अस्पताल में प्लेटलेट्स की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है जांच की, तो आप जांच ज़रूर करवाएं, चाहे आप प्राइवेट करवाएं, सरकारी करवाएं, जहां भी आपको सुविधा लगे। लेकिन आप कोशिश करें कि पानी खड़ा ना होने दें, और मच्छर पनपेंगे तो फिर डेंगू मलेरिया आदि कई तरह की बीमारियाँ, कई तरह के बुखार आपको हो सकते हैं, फिर घर का कामकाज करने में परेशानी होगी, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो उम्मीद है कि आप इस तरफ ध्यान देंगे और बरसात के इस मौसम में स्वस्थ बने रहेंगे, और स्वस्थ बने रहने के लिए ज़रूरी है कि कुछ अच्छा गीत संगीत भी आप सुनते रहें।

श्रोताओं, इस मीठे से गीत के बाद एक और विषय की तरफ बढ़ते हैं और वो विषय है विश्व जूनोसिस दिवस, जो आज हम मना रहे हैं। दुनिया भर में आज यानी 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जा रहा है और यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में बीमारी या संक्रमण के फैलने का खतरा रहता है। जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में बीमारी फैलने वाली यह स्थिति काफ़ी खतरनाक है, जिसे अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। ऐसा संक्रामक रोग जूनोसिस को हम कह सकते हैं जो दो प्रजातियों के बीच फैल सकता है। आसान भाषा में कहें तो जानवरों से इंसानों में या फिर इंसानों से जानवरों में फैलने वाला रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक जूनोटिक रोगजनक बैक्टीरिया वायरल या पैरासाइटिक हो सकते हैं। इसके अलावा ये सीधे संपर्क में आने खाने के जरिए या फिर पानी और पर्यावरण के माध्यम से भी इंसानों में फैल सकते हैं। जूनोसिस दुनिया भर में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, क्योंकि खेती के दौरान जानवर और इंसान दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अगर एक बार जूनोसिस की समस्या पैदा हो गई तो यह जानवरों से मिलने वाले सामानों के उत्पादन और व्यापार में भी बाधा पैदा कर सकती है। हर साल की तरह इस साल भी विश्व जूनोसिस दिवस आज के दिन मनाया जाएगा और मनाया जा रहा है। फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पॉस्चर ने 6 जुलाई 1885 को रेबीज वायरस के खिलाफ पहले टीकाकरण का सफलतापूर्वक जो है वो प्रयोग किया था। रेबीज वायरस एक जेनेटिक बीमारी है और प्रजातियों के माध्यम से फैलने के लिए जानी जाती है, चाहे वो वेक्टर जनित हों, भोजन जनित हों। जेनेटिक रोग जानवरों और मनुष्यों के बीच तेजी से फैलने के लिए जाने जाते हैं। मच्छर भी काटता है। ये जानकारी WHO द्वारा साझा की गई है कि मच्छर काटने से भी जूनोस जो बीमारी है वो हो सकती है। जूनोस में सभी नए पहचाने गए संक्रामक रोगों के साथ साथ कई दिनों पहले से मौजूद जो संक्रामक रोग हैं उनका भी एक बड़ा प्रतिशत शामिल है, जैसे कि HIV, और इसकी शुरुआत एक जूनोसिस रोग के रूप में होती है, लेकिन म्यूटेट होने के बाद यह केवल एक स्ट्रेन में बदल कर रह जाती है। और इसके अलावा अन्य जूनोस बीमारी जैसे कि इबोला वायरस या फिर वैश्विक महामारी जो पिछले दिनों हमने झेली COVID-19 जो है वो पैदा करने की क्षमता भी इसमें होती है। तो विश्व जूनोस दिवस को मनाने का मुख्य कारण इस दिन को सेलिब्रेट करना है, जिस दिन बीमारियों के खिलाफ पहला टीकाकरण

हुआ था। इसके अलावा इस दिन का मकसद लोगों से बीमारियों के बारे में अधिक जागरूक करना भी इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य है। और अब इस चर्चा के बाद सुनते हैं गीत।

एक मुद्दत से पुकारा नहीं तुमने मुझको, ऐसा लगता है मेरा नाम नहीं है कोई। बस इसी बात से उकताया हुआ फिरता हूँ, तुम हो मशरूफ़, मुझे काम नहीं है कोई। और श्रोताओ, इन्हीं सब शब्दों, बातों, गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपनी साथी उषा मलिक को आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम का ये अंक यहीं समेटने की। अपना ख्याल रखिए और ख्याल रखिए उनका भी जो आपके अपने हैं, और हमेशा जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।

आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। अब होंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की प्रतीक्षा करें।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि

0: इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायर साइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना

0: निश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
1: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। समय हुआ है प्रातः के 8:30:24। इस समय है कार्यक्रम लोक संगीत का, जिसमें आज हमारे कलाकार हैं पासी नैयर और उनके साथी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: और ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
1: ओ गणी देव।

आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म का गीत, शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ, बोल आनंद बख्शी के संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सभी की। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, गगन सोनी, जैस्मीन व रेखा, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या सुच्चा पाठक, गांधी रोड रोपड़ से आप हैं हरदेव, मीका बलविंदर और मीका विरक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स महेंद्रगढ़ से विकास गांधी, ममता गांधी, विक्की, नोनू, शगुन गांधी, ताज रेडियो श्रोता संघ लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकिब पंवार, छोटू और मोहम्मद हसन पंवार, और आप हैं बाजार चौक गांव दीवाल से शंकर लाल गंगवाड़े, वनीता, छोटू, रोशनी और अजय गंगराड़े। और आइए अब सुने कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन गीत से पहले सुनते हैं कुछ संदेश भी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: बीस साल बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत। आवाज़ हेमंत कुमार की है, गीत रचना शकील बदायनी की, संगीत हेमंत कुमार का, और पसंद के लिए हमें आप सभी के खत मिले। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंथले, आरती जोंथले, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरभ शर्मा, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, सविता, स्वाति व परिवार के सदस्य, करुला मुरादाबाद से आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, बेरडी से लिखते हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तान्या, चौधरीवास से आप हैं राजू अग्रवाल, केशव, अलक, चरणदास और रेखा, कोटवा नारायणपुर बलिया यूपी से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय। आप सभी की पसंद, आपकी नजर।
3: जरा नजरों से कह दो जी,

कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल। गांव दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश। राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक। आप हैं मसीता डब्वाली से दर्शन लोट, मूर्ति रानी। गांव खैरका सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनी लोट। गांव बलियाली भिवानी से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण, ममता बंसल, कमल बंसल, गर्विश तमन्ना। लोहा मंडी गंज डुंडवारा से मोहम्मद इकबाल सलमानी, मोहम्मद इमरान सलमानी, मोमिन इकबाल, फैजल इकबाल और चंद्रा बेगम। डोगर गांव राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का तन्मय। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। आप सभी ने सुनना चाहा है ज्वेल थीफ फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीत रचना मजरू की, संगीत सचिन देव बर्मन का।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे शर्मीली फिल्म का गीत, नीरज का लिखा हुआ। गीत को संगीतबद्ध किया था एसडी बर्मन ने। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले, उषा मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को फिल्म कालिया में। गीतकार मजरू, संगीतकार राहुल देव बर्मन। और दोनों ही गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश हमें आप सभी की मिली। भुच्चो कैचिया भटिंडा से, परम जोड़ा, मनमीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, सिमू, एकम और अभी। अली का डब्वाले से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद व सौरभ डूडी। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी, विकास, प्रियंका, रमन इंदौरा, भविष्य खन्ना व दीपांशी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। डब्वाली से हैं जेके बोकोलिया, सुनीता, संजय, मीनू और अनिल। कस्बा बराड़ा अंबाला से आप हैं रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत, गुरशबद, राहुल। और आप हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि और शीतल राजेश।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या

0: बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दिव्यान दृष्टि तोशानी व हिमानी, आप हैं गांव मोहला हिसार से, राजकुमार ढोचक, गीता अमन व सानिया। सिसाई से लिखते हैं नीलम बोध, मीना कृष्णा, रामफल मोन। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरपाल, योगेश कुमार, दीपक व पूजा खटक। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना विशाल, सुप्रिया अनमोल, धनपाल, महावीर संधु, रमेश मिगलानी। आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता सिद्धांत और एकांश गवानकर।

आप सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का गीत, युगल स्वर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले के थे, SH बिहारी के बोल धुन ओपी नैयर के, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं साहिर का लिखा गीत, रवि का संगीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। फिल्म का नाम है दो कलियां और गीत के लिए हमें आप सभी के खत मिले। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। मोहाली से आप हैं बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित वैध्वनी गवाणकर। गांव मोहम्मदपुर रतिया से जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन कुशल्या, मनकीरत, जश्न बूक, भूषण खेड़ा, गुरछिंदर व समस्त बूक परिवार। चौटाला रोड मंडी डबवाले से अंग्रेज सिंह सग्गू, सुखविंदर कौर, रोबिन, डिम्पल, नूर प्रीत। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, इशरत, रुबीना, वसीम, आरिज, अरहान, हमजा बाबू, मुजम्मिल, हुमैरा नाज, सुमैरा, साजिया, शाहीन, नाजिया, बच्चू शेख और चीना शेख। कोकिलवाड़ा और आई मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुजत जहां, शेख टोली। समस्तीपुर से आप हैं शहनवाज परवेज और परिवार के सदस्य। प्रमिला गंजालोट रतलाम MP से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश, ऋषि वर्मा। सादुल शहर से आप हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। आप सभी की पसंद पर आइए सुने ये गीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये दिल आशिकाना, आइए सुने इस फिल्म का शीर्षक गीत। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं, गीत समीर का, संगीत नदीम शरवण का और पसंद आप सभी की। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा इल्मा, असलम सैफी, बदायूं से जमीर खान आफरीन, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंद, चंदन और अंकुश अरोड़ा, गांव बिलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, खारी कुआ बड़ौद से शकुंतला देवी, अनीता शर्मा, संगीता अलका मोहित, अनुज व महेश शर्मा, माधवान पाना झोंझू कला से विनोद कुमार प्रजापत, अंकित प्रिया, दीपक, तनिषा, वंशु और सोनू, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, कुश व दीक्षा, लच्छनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, भाटापारा से लिखते हैं भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू, दादरी गेट से आप हैं कृष्ण, कोमल और कुणाल, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से मोहम्मद सादिक, शाकिर, मुस्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गोड, मोहम्मद शादाब खत्री। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

गांव लुडेसर से आप हैं पप्पू रामघाट, संतोष देवी, लक्ष्मी, प्रियंका और साक्षी। गांव भड़बूजी, जिला आगर, एमपी से रघुनाथ मालवीय, सुषमा, भंवरबाई, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, प्रवीण, रोजी, बिट्टू, साजदा व हिना कोसर। आप हैं गांव बेलखेड़ा जबलपुर मध्य प्रदेश से गणेश विश्वकर्मा, गुड्डू मिस्त्री, इंद्र कुमार, सुरेंद्र विश्वकर्मा, सुलेखा, रेखा, संगीता, मोना, सरोज, रिया, अनिल, अमित, प्राची, कार्तिक व समस्त विश्वकर्मा परिवार। बरका काना रामगढ़ से आप हैं अफजाल ताज। गांव दिनोद, जिला भिवानी।

से हरपाल सिंह, हर्ष, निधि, कीर्ति, काजल और मुकेश, गांव दिनोद से ही आप हैं लीलू राम मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा, विजेंद्र व परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है दिल है तुम्हारा फिल्म का गीत। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं, गीत और संगीत समीर और नदीम श्रवण का।

भटिंडा रोड डबवारी से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित नारंग, कबीर बस्ती से आप हैं गुरप्रीत गोरा, दिया राजू, निर्मल पुहली, डबवाली से ही आप हैं यशिका, युवराज गांधी, बसंत सिंह, निमन और नंदिनी, करनाल से आप हैं नरेंद्र तनेजा, देव कोमल, शिवम तनेजा, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशील, नीलम, कैलाशपुरी, रमापुरी, वीपी रंजू और आरएसपुरी, गांव चोहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन मुस्कान और कुणाल ढिंगिया। आप सभी की पसंद पर आइए सुने कार्यक्रम का ये अंतिम गीत कृष्णा कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अग्निसाक्षी।

0: और अब इसी गीत के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का फिल्म संगीत का ये फरमाइशी कार्यक्रम यहीं समेटने की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रम्बनन मंदिर जाएंगे।

0: और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हो रहा है। नवगठित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमान 2026-27 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरणों में सुधार किए जाएंगे। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माही, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said that he will visit Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. He said the visit will further deepen the comprehensive strategic partnership which was elevated during his 2018 visit to Indonesia and follows President Prabowo's state visit to India as a chief guest at the Republic Day celebrations in 2025. Prime

मीडियम वेव 262.464 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दोपहर के 12:30:15 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा के आरंभ में प्रस्तुत है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है।

0: भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है?
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी।
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी।
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
1: जी।
2: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
2: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग है।

0: है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे अपने श्रोताओं की ओर से कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
1: जी
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है।
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके

0: इसे मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ, जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें

0: काम हो सकता है अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार,
1: जी
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, सो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है। एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: जी,
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी,
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी, उसी को
0: इसके अलावा

0: हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया, वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी।
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल, नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8-44-844-0632 8-44-844-0632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16 ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpancell@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, दिन का 1 बजने को है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे हिंदी में, और उसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य

0: विधवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले होंगे।

0: रोहत तक केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज अंबाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर मुखर्जी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके राष्ट्रवाद, अखंड भारत और जन सेवा के विचारों को याद किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन देश की एकता, विचारधारा और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहा। उनकी जयंती पर यह कार्यक्रम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर उन्होंने गत 12 वर्षों में हरियाणा और देश के अन्य भागों में हुए विकास की भी चर्चा की।
2: आज विकसित भारत में और बढ़ने में विकसित हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 12 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर बनी है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 800 मेगावाट का दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो यमुनानगर में 8469 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती को डेडिकेट किया है। उसी तरीके से रेवाड़ी बाईपास लगभग 1070 करोड़ रुपए की लागत से बना करके आपको समर्पित किया।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह अवसर राष्ट्र की चेतना, विचार और संवेदना को नमन करने का महापर्व है।
3: आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे, साथियों वे ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित।

0: किया। इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें किया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं और उन महान व्यक्तित्व में से जो केवल अपने समय का नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं।
1: उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। आज हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद के मूल्यों को और मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समारोह में घोषणा की कि अंबाला में लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले साइंस सेंटर का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा तथा शहीदी स्मारक में उनकी भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को चीन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित जींद रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जींद में प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे और एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी भी उपस्थित रहेंगी। हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश वासियों से डेंगू की रोकथाम में सक्रिय भागीदारी निभाने की भी अपील की है। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने आज जिला के सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे पूरे जुलाई माह को डेंगू रोको माह के रूप में मनाएं और अपने घरों व आसपास के क्षेत्र को मच्छरों से मुक्त रखने के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाएं। उन्होंने कहा कि वे घरों में ऐसा कबाड़ न रखें जिसमें पानी जमा हो। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के उपचार के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। समय मिलाइए स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 1:10 और 21 सेकेंड। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनमोल मोती फिल्म के गीत के साथ। आवाज़ महेंद्र कपूर की है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, रवि का संगीत है।
3: अरे खबर तुझे तक में कोई नजर झुकता

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवाते हैं सौदागर फिल्म से गाना, आवाज़ किशोर कुमार की है, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको सुनवाते हैं इंद्रजीत सिंह रागी का लिखा ये गाना, जिसके लिए धुन बनाई रविंद्र जैन ने। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की। फिल्म का नाम चोर मचाए शोर।

शोर मचाए शोर फिल्म से गाना हमने सुना। चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक से, और अब आपको सुनवा रहे हैं शिकार फिल्म से गीत, आवाज़ आशाताई की है। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और इसके लिए धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, मेरा नाम जोकर फिल्म से। आवाज़ आशा भोसले की, शैलेंद्र की बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: encounter now, Mia Sarkar produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 to reach her first quarterfinal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Now Mia Sarkar also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये

0: का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
0: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: जगन्नाथ तकानेन। दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति

0: की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जगन्नाथ चकानन।
2: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
2: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
2: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर न्यूज ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 2:30 और 13 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: जाएंगी, उतनी ये उसकी का जो फुलाव है हमारे पौधे का, उतनी जो आगे ऊपर है जैसे बढ़वार तो ही मिलेगा, तो वो ज़्यादा बनेगी और हमारी जो फसल वो अच्छी बनेगी। सब्जी फसलों में भी इसी प्रकार है भाइयों, देखो सब्जी फसल हैं वो समय समय पर हम ले हुए हैं और उनकी जो सिंचाई है वो करते रहे हैं। आने वाला जो समय है उसमें इस बात का ध्यान करें कि भाई जो बरसात हुए है तो उसमें पानी की निकासी का होना बहुत ज़रूरी है, और सारी की सारी जो फसल हैं उसमें आने वाले समय में यदि पानी खड़ा रह जाएगा कोई भी फसल है तो उसको नुकसान बनेगा। इसी प्रकार जो हमारे कुछ किसान भाई हैं इनसे कुछ हटकर भी खेती का काम कर रहे हैं और मान लो सब्जी का भी कर रहे हैं भाई, चारे वाली फसलों का भी कर रहे हैं और हमारी मुख्य जो मोटी फसलें हैं जैसे धान की फसल कहें हम, गन्ने की फसल कहें, इनके साथ साथ जो व्यापारिक फूलों की हम बात करें, व्यापारिक फूलों की बात करें तो उसमें एक जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वे जो अपना खेत का चुनाव है वो ज़रूर करें। उसके अंदर भी जैसे बरसात का मौसम है उसके अंदर यदि पानी खड़ा रह जाए है तो फिर कोई भी हम जो फसल है वो नहीं ले सकते, विशेषकर जो हम फूलों की काश्त यदि हम करना चाहते हैं तो उसमें हमने हमारे पास सबसे पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि भाई हमने जहाँ पर हम फूलों की काश्त कर रहे हैं विशेषकर व्यापारिक स्तर से, क्योंकि यदि हम अपनी शौकीनी के लिए यदि कहीं कर रहे हैं या अपने कहीं छोटा मोटा बगीचा बनाया है या मकान है या कोई हमने कोई खाड़ी बना के नाली बना के उसके अंदर यदि बिजाई की है उसको तो हम बचा सकें, लेकिन यदि व्यापारिक स्तर पे हम ज़्यादा एरिया में कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी बात है कि भाई जो जहाँ पर हम फूलों की काश्त कर रहे हैं वहाँ पर पानी निकासी का हमारा बहुत अच्छा साधन होना चाहिए। और विशेष बात यह है कि इसमें इस चीज़ का भी चुनाव करें कि भाई हमने कौन सी किस्म लेनी है, किस तरह के फूलों की लेनी है, गेंदे की लेनी है, गुलाब की लेनी है, गैलोडियस की लेनी है, रजनीगंधा की लेनी है, या जो दूसरी हमारी फूलों की अनेकों किस्में ऐसी हैं जिसको हम समय के हिसाब से उनकी मांग के हिसाब से आगे विवाह शादी आए हैं उनके हिसाब से, तो ये सारी की सारी फसलें जो फूलों की हैं इस तरह ली जा हैं कि भाई ये उस समय पर जाकर ना हमने फूल देना शुरू कर देंगी और हमने उससे मुनाफा ज़्यादा होगा। इसमें कुछ बात करेंगे जो व्यापारिक फूलों की काश्त के बारे में, उससे पहले सुनेंगे रागनी रणबीर बड़वासिनी और उनके साथियों की गाई हुई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाए आकाशवाणी का साथ, हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन, विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी रणबीर बड़वासिनी और उनके साथियों की गाई हुई भैया रागनी इनकी एक और भी सुनाएंगे, लेकिन खेत खलियान में हम जो चर्चा कर रहे थे व्यापारिक फूलों की काश्त के बारे में, उसमें देखो जहाँ तक हम बात करें गुलाब की, तो उसके लिए जो मिट्टी की बात करें वो रेतली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए, 6 से लेकर 8 तक का जो पीएच मान होना चाहिए। खेत की तैयारी जिसमें पर हम कर रहे हैं उससे कम 1 महीना पहले अच्छे गोल खड्डे बना लें, उसके बाद 30 से 60 से 90 सेंटीमीटर की जो दूरी है उस हिसाब से लगानी है, जिसकी गहराई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये ट्रैक्टर वाला जो ओगर होता है उससे इस गड्ढे हो जाए हैं। बाकी इसमें गोबर की खाद हमने डालनी है 50 टन 1 हेक्टेयर में, और जो यूरिया डालना है वो ज़्यादा डला है इसमें, लगभग 800 किलो के आसपास डला है। सिंगल सुपर फास्फेट भी 1250 किलो प्रति हेक्टेयर का हिसाब से डला है, म्यूरेट ऑफ पोटास भी 320 किलो प्रति हेक्टेयर का हिसाब से डला है, ये हम ले सके हैं। बाकी इसमें कई जो भी हमारी जो किस्म

0: है जो अच्छा हमारे उसमें है वो हम किसम लेस के हैं, और गैलोडियस है ये भी एक बहुत अच्छी व्यापारिक फूलों की काश्त मावे है। इसमें जो रेतली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, 6 से लेके 8 तक का जो पीएच मान है वो होना चाहिए, और इसमें जो फूल हैं वो अच्छे बढ़िया हम ले सकें। इसमें पीले फूल भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, लाल गुलाबी हैं वो भी ले सकते हैं, नीले और जो बैंगनी फूल हैं वो भी इसके अंदर लिए जा सकते हैं। बाकी इसको भी हम लगाने के लिए यदि मान लो हम लगाए हैं तो उसमें जो किस्म है वो अपना जो स्थानीय खेत है उसके हिसाब से हम उस चुनाव कर सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें भाई गेंदे की, गेंदा जो रेतली ज़मीन है उसमें अच्छा माना गया है। इसमें 7 से लेकर 7.5 तक का जो पीएच मान है वो होना चाहिए। अच्छी बढ़िया किस्म ले लें, इसमें जो बीज की मात्रा है वो 160 से 240 ग्राम एक किलो के हिसाब से लेनी है। जहाँ तक हम बात करें भाई पहले उसकी पौध तैयार कर लें, जो अच्छी अब आगे ये जुलाई से लेके और जो सितंबर का महीना आवे है उसके अंदर 10 सेंटीमीटर उठी हुई जो कैरी हैं वो हमने 3x6 की कैरी वो लेनी पड़ेंगी। जो बीज है वो कैरी में डालने के बाद उसके ऊपर जो बारीक सा गोबर की जो छिलका है जिसको हम कह दें बारूद वो कह दें उसको चूर्ण है वो उसके ऊपर हल्की हल्की परत चढ़ा दें ताकि वो उसका जमाव है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और जो पौधे से पौधे की दूरी लगाने की हम बात करें, जब नर्सरी में अच्छे पौधे बन जाए तो 8 से 10 सेंटीमीटर इस हिसाब से हमने जब उसके पौधे हो जाए उसमें लगाड़ी की जो पौधा है वो हमारी तैयार हो जाए है, और उसके अंदर खेत के अंदर अच्छी गली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के और उस खेत की तैयारी कर सके हैं। समय रहेगा तो भैया तो फिर बात करेंगे, उससे पहले सुनेंगे रागनी रणबीर बड़वासिया और उनके साथियों की गाई हुई।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
2: सतर्क रहिए। स्पेशल कैंप्स ऑन अनक्लेम्ड असेट्स आर बीइंग कंडक्टेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2025।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी रणबीर बड़वासिनी और उनके साथियों की गाई हुई भैया जो कार्यक्रम है उसका समय हुआ समाप्त। शाम ने 6:20 पर भैया ने फिर मिलाएंगे सारे बाण भैया ने। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजे हैं, हमारी दूसरी प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। तीसरी सभा में शाम 5:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कायरो तक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 और 15 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की शाम की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

नमस्कार, युवा संसार सुन रहे सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त नंदिनी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जो है विश्व जूनोसिस दिवस। जी हां साथियों, विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उन संक्रामक रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं। ये दिवस मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को भी रेखांकित करता है। साथ ही इस दिवस की शुरुआत 6 जुलाई वर्ष 1885 की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में की जाती है, जब फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्टर ने रेबीज के विरुद्ध पहला सफल टीका लगाया था। उनके इस योगदान ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया और इसी कारण हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद के कारण होते हैं और जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, जैसे कि रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, निपाह वायरस, इबोला और कुछ अन्य संक्रामक रोग। ये संक्रमण संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क, उनके काटने, दूषित भोजन या पानी तथा कीड़ों के माध्यम से फैल सकते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता, पशुओं की उचित देखभाल, समय पर टीकाकरण, सुरक्षित खाद्य पदार्थों के उपयोग तथा पशु जनित रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूक करना है। ये दिवस वन हेल्थ की अवधारणा को भी बढ़ावा देता है, जिसके अनुसार मानव, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सरकारें, स्वास्थ्य संस्थान, पशु चिकित्सक और विभिन्न संगठन इस अवसर पर जागरूकता अभियान, सेमिनार और स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि भविष्य में जूनोसिस रोगों के खतरे को कम किया जा सके। तो साथियों, अभी हमने आपको जानकारी दी आज मनाए जा रहे एक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जो था विश्व जूनोसिस दिवस। और जैसा कि आप जानते हैं, आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं हेलो जीनियस, जिसमें हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का सही जवाब आपको हमें बताना होता है। और कार्यक्रम में पहला प्रश्न पूछने से पहले हम आपको कार्यक्रम से जुड़े कुछ नियम बता देते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारी 3 फ़ोन लाइंस काम कर रही हैं। नंबर हैं 2554446, 2554447 और 2554448। 01262 रोहतक का STD कोड है। हमारे साथी जो कार्यक्रम में जीनियस बन जाएंगे, वो दोबारा कार्यक्रम में कॉल ना करें, ताकि दूसरे साथियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। और कार्यक्रम में जीनियस बनने के लिए आपको लगातार हमारे 3 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। और हमसे बात करते समय आप जिस भी डिवाइस पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उससे थोड़ी उचित दूरी बनाकर रखें, ताकि आपसे बातचीत करते वक्त किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और हमारे 2 साथी अगर किसी एक प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उस प्रश्न का सही जवाब हम आपको देंगे। और उम्मीद करते हैं आप कार्यक्रम के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी, जो विशेष रूप से दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए समर्पित है, कहाँ स्थापित की गई है? नमस्कार, हेलो हेलो साथियों, आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी। हेलो हेलो साथियों, आपको सही जवाब देना है इस प्रश्न का। प्रश्न

0: मंत्रालय ने कृषि के लिए बहुभाषी एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च करने की घोषणा की। आपको मंत्रालय का नाम बताना है।
1: मैम, राष्ट्रीय प्रसारण मंत्रालय।
0: जी, ये सही जवाब नहीं है विपिन।
1: तो कृषि किसान मंत्रालय।
0: जी, ये भी सही जवाब नहीं है।
1: मैम, सवाल एक बार फिर से बताइए।
0: प्रश्न हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। किस मंत्रालय ने कृषि के लिए बहुभाषी एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च करने की घोषणा की?
1: मैम, सहकारिता मंत्रालय।
0: जी, एक बार फिर से दोहराएं।
1: मैम, सहकारिता मंत्रालय।
0: जी, माफ कीजिएगा, ये भी सही जवाब नहीं है।
1: जी, तो थैंक यू मैम।
0: जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन। जुड़ते हैं अगले साथी से इसी प्रश्न के साथ। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? साथियों, अभी जो हमने आपसे प्रश्न पूछा है वो है, किस मंत्रालय ने कृषि के लिए बहुभाषी एआई टूल यानी भारत विस्तार लॉन्च करने की घोषणा की है? आपको मंत्रालय का नाम बताना है। हेलो, तो साथियों, जब तक कोई साथी हमसे जुड़ता है इस प्रश्न से संबंधित, हम आपको जानकारी साझा कर देते हैं कि ये भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल लॉन्च करने की घोषणा जो है वो भारत ने की है, जो एग्री स्टैक पोर्टल और आईकार की कृषि तकनीक को एआई से जोड़ेगा। लगता है कोई साथी हमसे जुड़े हैं। हेलो,
3: नमस्ते मैडम।
0: जी नमस्कार सतीश, कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका।
3: कृषि मंत्रालय मैडम।
0: जी, ये सही जवाब नहीं है।
3: थैंक यू मैडम।
0: जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रमों के नियमों के मुताबिक साथियों, दो साथी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है वित्त मंत्रालय। और इस प्रश्न से संबंधित जानकारी हम आपको दे देते हैं कि वित्त मंत्री ने भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल लॉन्च करने की घोषणा की है, जो एग्री स्टैक पोर्टल और आईकार की कृषि तकनीक को एआई से जोड़ेगा। एग्री स्टैक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसमें तीन मुख्य रजिस्ट्रियां हैं, किसान रजिस्ट्री, फसल बोआई रजिस्ट्री और जियो रेफरेंस्ड गांव मानचित्र, जिन्हें राज्य सरकारें व केंद्र शासित प्रदेश संभालते हैं। और ये थी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित। एक बार हम फिर से प्रश्न दोहरा देते हैं। किस मंत्रालय ने कृषि के लिए बहुभाषी एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च करने की घोषणा की थी, जिसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। हेलो, और अगला प्रश्न साथियों आपको बताना है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार, अपना नाम?
1: मैं विपिन बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश सागर से।
0: जी विपिन, कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका। आपको बताना है, बेहद आसान प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
1: विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, मैम ये इसी जुलाई के महीने में है।
0: जी नहीं,
1: तो मैम
0: आपको बता दें कि इसकी स्थापना वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन यानी ICDO द्वारा की गई थी।
1: मैम 26 मार्च को।
0: जी मार्च तो है विपिन, और लेकिन 26 मार्च नहीं है,
1: तो मैम 7 मार्च,
0: थोड़ा और पहले।
1: 6 मार्च,
0: थोड़ा और पहले।
1: तो मैम 4 या 5 मार्च को हो सकता है।
0: जी माफ कीजिएगा, हम इसमें भी हम आपको कंसीडर नहीं कर पाएंगे।
1: ठीक है मैम, तो शायद 2 मार्च।
0: जी नहीं।
1: जी थैंक यू।
0: चलिए विपिन, आप कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा इस प्रश्न का सही जवाब सुनने के लिए। तब तक हम अगले साथी से जुड़ते हैं इस प्रश्न से।
4: हेलो।
0: हेलो,
4: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, नाम बताएं।
4: रामधारी बात कर रहा हूँ, कुतुबपुर हांसी।
0: जी रामधारी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने प्रश्न सुना।
4: जी, 1st of March।
0: जी ये बिल्कुल सही जवाब है, 1 मार्च को हम नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं, जिसकी स्थापना 1990 में ICDO द्वारा की गई थी। और इसी के साथ एक

0: और दिवस हम आपसे पूछ लेते हैं। आपको बताना है कि सतत विकास में इंजीनियरिंग की भूमिका को मान्यता देने के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
1: इंजीनियर्स डे मई 16 मई।
0: जी नहीं।
1: धन्यवाद
0: जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते हैं अगले साथी से इसी प्रश्न के साथ। लगता है कोई हम साथी हमसे जुड़े हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं।
3: जी मैं रवि बोल रहा हूँ।
0: जी रवि, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपने प्रश्न सुना।
3: नो मैम।
0: जी, आपको बताना है कि सतत विकास में इंजीनियरिंग की भूमिका को मान्यता देने के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है?
3: विश्व इंजीनियरिंग दिवस ये मार्च में मनाया जाता है, चार मार्च को।
0: जी ये बिल्कुल सही जवाब है, ये 4 मार्च को मनाया जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। आपको बताना है रवि कि किस राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है?
3: पेपरलेस।
0: जी आपको राज्य का नाम हमें बताना है।
3: साउथ का क्या कोई?
0: जी एक बार फिर से दोहराएं।
3: साउथ से है कोई?
0: जी नहीं। आपको हम बता दें ये उत्तर पूर्व दिशा में है।
3: नॉर्थ ईस्ट।
0: जी
3: असम।
0: जी नहीं।
3: सिक्किम।
0: जी ये बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम को जो है वो पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी घिरा हुआ है। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, और कार्यक्रम का वो प्रश्न जो आपको जीनियस भी बना सकता है। आपको बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइए।
3: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: जी ये बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी आसान प्रश्न था ये रवि आपके लिए, लेकिन आप कार्यक्रम के पहले जीनियस बनते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहिएगा। तो साथियों, हमें हमारे आज के कार्यक्रम के पहले जीनियस रवि मिल चुके हैं, और उम्मीद करते हैं हमें और भी जीनियस आज के कार्यक्रम में मिलेंगे। और कार्यक्रम का अगला प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। आपको बताना है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? हेलो साथियों, आपके लिए प्रश्न है।
4: हेलो।
5: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार,
5: नाम रामधारी बात कर रहा हूँ।
0: जी रामधारी, फिर से स्वागत है आपका। आपको बताना
5: 14 जून को मनाया जाता है।
0: जी ये बिल्कुल सही जवाब है, 14 जून को हम विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाँ जी। और इसी के साथ रामधारी, आपके लिए अगला प्रश्न है कि महाभारत में भीम के शंख का नाम बताइए।
5: भीम का शंख।
0: जी
5: पांचजन्य।
0: जी फिर से दोहराएं।
5: पांचजन्य तो सही में भगवान श्री वो था मैम, क्या बोलते हैं, पौंडरक।
0: जी ये बिल्कुल सही जवाब है, ये शंख भीमसेन के विशाल काय स्वरूप, असीम बल और भयानक गर्जना का प्रतीक था, पौंडर सही जवाब है। और इसी के साथ कार्यक्रम का वो प्रश्न जो आपको जीनियस भी बना सकता है। क्या लगता है रामधारी, आप जीनियस बन पाएंगे?
5: कोशिश तो रहेगी मैम, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कार्यक्रम से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है।
0: जी ये तो है ही रामधारी जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपसे भी हम कई बार बहुत कुछ सीखते हैं। प्रश्न से ज्यादा जानकारी हम आपसे ही लेकर जाते हैं। और आपके लिए प्रश्न है, बेहद आसान प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। हम चाहते हैं आप जीनियस बने हमारे आज के कार्यक्रम के। आपको बताना है स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हुआ था?
5: निधन जन्म पता मैम, निधन का नहीं मैम, कोई आइडिया नहीं है। 1875 में शायद उनका जन्म हुआ था। धन्यवाद।
0: चलिए कोई बात नहीं रामधारी, इसी तरह से आप प्रयास करते रहिएगा और जुड़ते रहिएगा हमारे कार्यक्रम में ऐसे ही। हेलो।
6: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
6: नमस्ते मैम।

0: नहीं मैम, राहुल बात कर रहा हूँ मैं, झुंझुनू राजस्थान से।
1: जी राहुल, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हुआ था? विवेकानंद जी का निधन कब
0: स्वामी
1: हुआ था?
0: विवेकानंद
1: जी
0: 1870।
1: जी ये नहीं, सही जवाब नहीं है।
0: तो शताब्दी बता दीजिए, फिर सन का आइडिया लगाऊंगा। 70वीं में हुआ?
1: जी नहीं।
0: 1658।
1: जी ये भी सही जवाब नहीं है।
0: ठीक है, नहीं आता।
1: चलिए राहुल, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने इसके लिए आप ऐसे ही कार्यक्रम में हिस्सा बनते रहिएगा। और दो साथी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए हैं जो हमने पूछा था, स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हुआ था, जिसका सही जवाब है 4 जुलाई वर्ष 1902 को उनका निधन हुआ था। और उन्होंने पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले में स्थित बेलूर मठ में महा समाधि ली थी। उस समय उनकी आयु 40 वर्ष थी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूछ लेते हैं आपसे कार्यक्रम का अगला प्रश्न, जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? हेलो साथियों, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस हर साल किस दिन मनाया
0: हेलो,
1: जाता है? हेलो
0: नमस्कार मैम, रामधारी बात कर रहा
1: जी। रामधारी, आपने प्रश्न सुना?
0: हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानव बंधुता दिवस
1: जी
0: 4 फरवरी को।
1: जी ये बिल्कुल सही जवाब है। 4 फरवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में मनाते हैं। और इसी
0: जी
1: के साथ आप हमें बताइए रामधारी, बेहद आसान प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं कि करिम पूजा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
0: क्या बोला, क्रीम पूजा?
1: जी, करिम पूजा वन्य जीव अभयारण्य, आपको राज्य का नाम बताना है कि ये जो अभयारण्य है कहाँ स्थित है?
0: तमिलनाडु।
1: जी नहीं, आपके लिए बहुत बड़ा हिंट हम आपको दे देते हैं चलिए, कि ये गॉड्स ऑन कंट्री।
0: कोसोन कंट्री, केरला।
1: जी बिल्कुल सही जवाब है ये रामधारी आपका, केरला में ये अभयारण्य स्थित है। और केरला, केरल राज्य में स्थित ये मल्लपुरम जिले के नितांबूर क्षेत्र में स्थित है।
0: जी
1: और इसी के साथ कार्यक्रम का वो प्रश्न जो आपको जीनियस भी बना सकता है,
0: जी
1: आपको बताना है कि संपन्न पेंशन प्रणाली को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है?
0: पोर्टल को किसके साथ जोड़ा गया?
1: आपको बताना है संपन्न पेंशन प्रणाली को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है?
0: पीपीओ, पेंशन।
1: जी चलिए कोई बात नहीं रामधारी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप प्रयास करते
0: हेलो,
1: रहिएगा। हेलो
0: राहुल बात कर रहा हूँ मैम, गुड इवनिंग।
1: जी राहुल, कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका। आपको बताना है कि संपन्न पेंशन प्रणाली को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है?
0: ये अभी ये भारत सरकार ने जोड़ा है मैम, है ना?
1: हाँ जी
0: ये है डिजी लॉकर, उमंग।
1: जी ये बिल्कुल सही जवाब है, इसे उमंग के साथ जोड़ा गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपको बताना है, जिसका सही जवाब आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस PBD हर साल किस दिन मनाया जाता है?
0: ये 28 जुलाई।
1: जी ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है।
0: 9 जनवरी।
1: जी फिर से दोहराएं।
0: 9 जनवरी।
1: जी 9 जनवरी सही जवाब है आपका, क्योंकि 9 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश यानी कि भारत लौटे थे। और इसी के साथ वो प्रश्न जो आपको जीनियस बना सकता है, आपको बताना है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी?
0: ये अलेक्जेंडर जमेरो,
1: जी नहीं,
0: एंटोनी वेन लिवन वोक।
1: जी सही जवाब है आपका, एंटनी वैन ल्यूवेनहोक ने जो है वो बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम की थी। और इसी के साथ राहुल आप

0: कार्यक्रम के दूसरे जीनियस बनते हैं।
1: जी मैम, और आज आपका गला भी थोड़ा खराब है, फिर भी आप प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद,
0: और इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहिएगा। तो साथियों, कार्यक्रम में दो जीनियस आज हमें मिल चुके हैं, रवि और राहुल। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम के अंत तक हमें और भी जीनियस मिलेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ। आपको बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, रामधारी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका।
2: जी,
0: आपको बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है।
2: टिटिकाका?
0: जी नहीं,
2: बेकाल, साइबेरिया, रूस।
0: जी, ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और ये विश्व की सबसे गहरी झील की मान्यता इसे प्राप्त है, बेकाल। और इसी के साथ आप हमें बताइए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है।
2: द्वीप?
0: जी,
2: अंडमान निकोबार द्वीप।
0: जी नहीं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 921 वर्ग किलोमीटर है। और आपको बता दें कि इसी द्वीप पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी स्थित है।
2: जी जी जी, ग्रेट निकोबार आइलैंड।
0: जी, ये बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेट निकोबार को भी भारत के सबसे बड़े द्वीप की मान्यता प्राप्त है। और इसी के साथ रामधारी, आप हमें बताइए कि उस शहर का नाम बताओ जिसे भारत की डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है।
2: जी, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सूरत।
0: जी, ये बिल्कुल सही जवाब है। सूरत को भारत की डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात राज्य का सबसे प्रमुख शहर है। और इसी के साथ रामधारी, आप भी आज के हमारे कार्यक्रम के तीसरे जीनियस बनते हैं। आपको आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत बधाई।
2: और ये कि तीनों ही लिसनर तुला राशि से संबंधित है।
0: जी बिल्कुल, रामधारी, रवि और राहुल।
2: जी जी जी, और सूरत को सबसे भारत का सुंदर शहर का दर्जा भी प्राप्त है।
0: जी बिल्कुल, रामधारी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये गुजरात का सबसे प्रमुख शहर भी है। और इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहिएगा, क्योंकि कार्यक्रम आप लोगों से ही संपूर्ण हो पाता है। तो आज के कार्यक्रम के जीनियस हमें मिल चुके हैं, रवि, राहुल और रामधारी। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम जो है वो हम देख पा रहे हैं कि लगभग समाप्ति की ओर है। एक और जीनियस हमें देखने को मिलेंगे। आपको बताना है कि हाल ही में सटीक रूप से दिनांकित सबसे पुराने बरगद यानी कि फिकस बेंगलेंसिस के वृक्ष की पहचान किस राज्य में की गई है। हेलो,
3: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी नमस्कार मैडम, मैं उमेश बात कर रहा हूँ।
0: जी उमेश, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने प्रश्न सुना।
3: जी नहीं, मैं मोबाइल ऐप से सुन रहा हूँ, इसी से कॉल कर रहा हूँ।
0: जी, आपको बताना है कि हाल ही में सटीक रूप से दिनांकित सबसे पुराने बरगद यानी कि फिकस बेंगलेंसिस के वृक्ष की पहचान किस राज्य में की गई है। आपको राज्य का नाम बताना है उमेश।
3: केरल?
0: जी नहीं, आपको हम बता दें कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है ये और ये लैंड लॉक्ड राज्य है।
3: त्रिपुरा?
0: जी नहीं, सही जवाब नहीं है उमेश।
3: मेघालय?
0: जी ये भी सही जवाब नहीं है।
3: धन्यवाद
0: जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में सटीक रूप से दिनांकित सबसे पुराने बरगद के वृक्ष की पहचान किस राज्य में की गई है। जो कार्यक्रम, जी नमस्कार,
4: सतीश बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी सतीश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रश्न सुना।
4: हाँ मैडम।
0: जी जवाब दीजिए।
4: गोवा मैडम।
0: जी नहीं सतीश, ये सही जवाब नहीं है।
4: उत्तर प्रदेश?
0: जी ये भी सही जवाब नहीं है। आपको हम बता दें कि ये पूर्व

0: भाग में स्थित एक राज्य है और लैंड लॉक्ड राज्य है।
1: मैडम जम्मू कश्मीर।
0: जी नहीं सतीश, चलिए कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर है, और इस प्रश्न का सही जवाब हम आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार के मुंगेर में स्थित एक बरगद के वृक्ष को सटीक रूप से दिनांकित सबसे पुराना बरगद माना गया है, जिसकी अनुमानित आयु लगभग 700 वर्ष है। वैज्ञानिकों ने इसकी आयु का निर्धारण लोक कथाओं या ऐतिहासिक अभिलेखों के बजाय एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी AMS आधारित रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किया। शोधकर्ताओं ने वृक्ष के मध्य भाग के समीप से लिए गए लकड़ी के नमूने से अल्फा सेल्यूलोज निकालकर कैलिब्रेशन कर्व तथा OX काल सॉफ्टवेयर की सहायता से इसकी आयु निर्धारित की, और इस अध्ययन ने ये धारणा गलत सिद्ध कर दी कि ये वृक्ष मुगल ब्रिटिश काल के उत्तरार्ध में लगाया गया था, और ये स्पष्ट किया कि ये बुर्रा बंगलों के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में था। और ये थी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित। और साथियों, आज के कार्यक्रम में हमें तीन जीनियस देखने को मिले, जो जिनका नाम है राहुल, रामधारी और रवि। और आज का कार्यक्रम बेहद अच्छा रहा, और जिस हिसाब से आप कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे, इसी तरह से आप कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का रोहतक तक केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप हिंदी समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है।

0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम।

पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 बजे। श्रोताओं, शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फोन इन कार्यक्रम चौपाल, और शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर आत्मन पुनिया की बातचीत का विषय रहेगा अरंड की काश्त। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे रात 8:25 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारित समय रहेगा शाम 7:30। एक फिल्म से इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रात 9:15 पर फिल्म दुल्हा बिकता है के गीत, और फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के मुख्य आकर्षण।

सुबह 7:15 पर विविधा कार्यक्रम में सुनिएगा राजबाला राज का कविता पाठ। सुबह सवेरे ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:25 पर, और युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार आप सुन सकेंगे कल शाम 5:30 पर। दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा जड़ वाली सब्जियों की देखभाल, और कल शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष की बातचीत का विषय रहेगा वन विभाग की योजनाएं, और कल शाम 7:00 ग्रामीण संसार कार्यक्रम में डॉक्टर आर

0: यादव की बातचीत का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल रात 8:25 पर। हरियाणवी संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद प्रसारित किया जाएगा कल रात 9:30 पर। कार्यक्रम लोक संगीत में कल सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे जय सिंह कलायती। और कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा कल सुबह 9:00 और कल शाम 7:30 पर। चित्रपट संगीत फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:10 पर। एक फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल रात 9:15 पर। और फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनिएगा कल रात 10:30 पर। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब आपको कुछ खोए हुए व्यक्ति संबंधी सूचनाएं दे दें। ये हैं प्रवेश, इनके पिता का नाम है राजेश, जो कि संजय कॉलोनी रोहतक के रहने वाले हैं, जो दिनांक 3 जुलाई 2026 से अपने घर संजय कॉलोनी से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहूँ, गोल चेहरा, सेहतमंद शरीर, कद 5 फुट 10 इंच, उम्र 20 साल, सफ़ेद रंग की टी शर्ट और काले रंग की लोअर और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में यदि आप कोई सूचना देना चाहते हैं तो थाना शहर रोहतक में दे सकते हैं। दूरभाष नंबर है 7082991115। दूरभाष नंबर एक बार फिर से सुनिए 7082991115। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। थोड़ी ही देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी चंडीगढ़ से रिले किया जाएगा।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में पहुंचा। आज अम्बाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जगत प्रसाद नड्डा ने देशवासियों से डॉक्टर मुखर्जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अम्बाला में बनने वाले विज्ञान केंद्र का नाम डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर रखने और शहीद स्मारक के नजदीक उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 9 जुलाई तक कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी

0: सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: आज अम्बाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संसदीय बोर्ड की सदस्य श्रीमती सुधा यादव ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके राष्ट्रवाद, अखंड भारत और जनसेवा के विचारों को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रणेता थे। एक देश, एक विधान, एक निशान के लिए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया।
2: आज का दिन इस बात को संकल्प लेने का है कि जो मुखर्जी जी ने हम देशवासियों से आशा रखी थी, जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में कोई कसर न छोड़े, अपना एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घड़ी लगा दे, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया, रक्षा विनिर्माण, सेमीकंडक्टर निर्माण, नई शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत जैसे अनेक निर्णय डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विजन को आगे बढ़ाने वाले कदम हैं। डॉक्टर नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी विचारधारा को धरातल पर उतारा जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटाकर उनके संकल्प को पूरा किया गया। डॉक्टर मुखर्जी ने पूर्वी पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर उनकी इस सोच को भी साकार किया है। हरियाणा में विकास की रफ्तार की तारीफ करते हुए श्री नड्डा ने विकास की अनेकों बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया।
2: आज विकसित भारत में और बढ़ने में विकसित हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 12 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर बनी है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 800 मेगावाट का दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर में 8469 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती को डेडिकेट किया है। इसी तरीके से रेवाड़ी बाईपास लगभग 1070 करोड़ रुपए की लागत से बना करके आपको समर्पित किया।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अम्बाला में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विज्ञान केंद्र का नाम डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर रखने और निर्माणाधीन शहीद स्मारक के नजदीक उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। अम्बाला में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। श्री नायब सिंह ने कहा कि आज उस महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है, जिनका जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और सिद्धांतों का प्रतीक है।
3: आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे, ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जयंती केवल उन्हें स्मरण करने का अवसर नहीं बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने तथा नई पीढ़ी के लिए उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों से प्रेरणा लेने का अवसर है।
3: साथियों, यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की ओर एक ऐसा ऋण मुक्ति है, एक विनम्र कृतज्ञता है उस महापुरुष के प्रति जिसने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। साथियों, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो हम ज्ञान, कर्म और राष्ट्रभक्ति की त्रिवेणी का एक अद्भुत संगम हम देखते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मित्र यह रेल जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। श्री मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित जींद रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्णलाल मिठा, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने प्रशासनिक तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर जींद देश भर में चर्चित हुआ है।
4: एनडीए सरकार और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद जींद जो अलग थलग कर रखा था, हरियाणा ने हिंदुस्तान के मेन नक्शे पर आ रहा है। देखिए हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ रहा है। ये ट्रेन 47 के विकसित भारत की एक पहचान बनेगी। डे बाय डे हिंदुस्तान चाहे मेक इन इंडिया के मामले में, हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, अभी एनर्जी के मामले में भी एक बहुत बड़ा कदम है जो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है।
1: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जींद और आसपास के जिलों से लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है, इसलिए प्रबंधों की समीक्षा की गई है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 जुलाई को जो जींद की पावन पवित्र भूमि पर जो आगमन होगा उसकी तैयारी के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी अधिकारियों की आज बैठक हुई है और पूरी योजना बनी है।
1: मौसम विभाग ने आज पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा कल से 9 जुलाई तक और फिर 10 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में पहुंचा। आज अम्बाला में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री डॉ जगत प्रसाद नड्डा ने देशवासियों से डॉ मुखर्जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सहयोग का आह्वान किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
6: हो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
8: आरबीआई कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भैया नरेंद्र भाई जी राम राम भैया। तो देखो, जहाँ तक हम मौसम की बात करें, मौसम में कुछ जगह पे बादलवाई चल रही है, कुछ जगह पे हल्की बूंदें भी आज सुबह आई हैं, और दो दिन से कुछ एक आध जगह पे कुछ बरसात भी हुई है, और एक आध जगह पे कुछ अच्छी बरसात भी हुई है, जिसके कारण जो हमारे किसान भाई हैं उनको, विशेषकर वो किसान भाई जिन्होंने धान की फसल की जो लगाई का काम है, रोपाई का काम है, वो शुरू कर रखा है, और जिन्होंने अपने खेतों में जो गन्ने की फसल है या जो पानी वाली फसलें हैं विशेषकर, उनको विशेष फायदा इसमें हो रहा है। बाकी बात करेंगे बाद में, आज पहले एक रागनी सुनवाओगे भैया ने, बाबू राम दैया और उनके साथियों की गाई हुई।

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी बावराम दैया और उनके साथियों की गाई हुई भाई देखो, लेकिन ईब जो समय है हमारा वो ये काम हमने पहले कर लेना चाहिए था। बाकी जो हमारे किसान भाई रह रहे हैं वो अपना जो मिट्टी की पानी की जांच है वो करवा सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर जो हम मिट्टी का परीक्षण हो जाए उसमें सही जो खाद है वो दे सकते हैं। और जब हम अपने खेतों में खाद की मात्रा संतुलित तरीके से देंगे तो उसमें जो हमारी पैदावार है वो भी बढ़ेगी और हमारा खर्चा है जो वो भी घटेगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका जब हमने पता लगा है कि भाई उसके अंदर किस चीज़ की कमी है और कितना देने से किस प्रकार का जो है वो उसको पूरा कराया जा सके है। लेकिन यदि हम ध्यान रखें, समय पर मिट्टी की जांच करवाएं तो उसकी जो कमा बेसी है उसका हमने पता लग जाए और जो खाद हमने देने हैं उसका पता लग जाए, इसी प्रकार जो पानी है उसका भी हमने अपना जो परीक्षण है वो करवा लेना है भाइयों। और बाकी की जो बात है वो फिर कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे समाचार समीक्षा जो चंडीगढ़ से प्रसारित करी जाएगी।

प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका सुकीर्ति। आज विश्व ग्रामीण विकास दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, कृषि उन्नति तथा ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसके गांव आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त हों। भारत की अधिकांश आबादी आज भी गांव में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण विकास केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति की आधारशिला भी है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार, कृषि, आधारभूत संरचना, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देना है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण लागू किया है। यह योजना पूर्ववर्ती मनरेगा के स्थान पर शुरू की गई है और पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को 409 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी प्रदान की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक मानी जा रही है। इसके अलावा पात्र परिवारों को अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की बजाय 125 दिनों के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। योजना की एक विशेषता यह भी है कि इसमें 60 दिनों के कृषि कार्यों को शामिल किया गया है, जिससे मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। हरियाणा ग्रामीण विकास योजना का उद्देश्य गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना,

0: सामुदायिक जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा ग्रामीण पलायन को रोकना है। इसके अंतर्गत गांव में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक सामुदायिक मंच विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण संपर्क मार्गों, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आधारभूत सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे गांव में भी शहरी सुविधाओं जैसी व्यवस्था उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास बजट का बड़ा हिस्सा सीधे पंचायतों के खातों में हस्तांतरित किया है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आई है और पंचायतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं लागू करने की स्वतंत्रता मिली है। बजट का एक निश्चित भाग जल संरक्षण, सोखता घाटों की सफाई, तालाबों के पुनर्जीवन तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे पर्यावरणीय कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 92,25,00,000 खर्च कर 5,033 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड तथा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे महिलाएं छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियां शुरू कर सकें। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे निजी क्षेत्र, स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान कर सकें। वहीं ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 12 फीट चौड़ी सभी ग्रामीण सड़कों को 18 फीट चौड़ा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में राज्य में 3,240 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों में से 1,696 किलोमीटर पर चौड़ीकरण का कार्य जारी है, जबकि शेष सड़कों पर भी शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से कृषि उत्पादों का परिवहन आसान होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। विश्व ग्रामीण विकास दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक बनाने का संकल्प है। हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाएं यह दर्शाती हैं कि यदि ग्रामीण विकास को रोजगार, कृषि, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और आधुनिक आधारभूत संरचना से जोड़ा जाए, तो गांव आर्थिक प्रगति के सशक्त केंद्र बन सकते हैं। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का प्रत्येक गांव विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भर का प्रतीक बने। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: कृषि जगत कार्यक्रम में भाइयों का फिर स्वागत है और अब एक बातचीत सुनेंगे। भाई पूर्व प्रसारित बातचीत है अरंड की काश्त के बारे में। डॉक्टर आत्मन पुनिया जी स्टूडियो में आए थे, बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी दी। जो भी हमारे किसान भाई अरंड की खेती करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी फसल है, तो भाई सुने ये बातचीत।
2: अरंड की काश्त आज इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आत्मन पुनिया जी को। आप सहायक वैज्ञानिक हैं, बावल में आप कार्यरत हैं, जहाँ पर आप रिसर्च का, अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब अरंड वैसे तो अगर पुराने समय में देखें तो जंगलों में या खेत खलिहानों के आसपास में कहीं इस तरह से उगा हुआ देखा जाता था
3: जी,
2: लेकिन इसकी जो व्यावसायिक काश्त है ये कब से शुरू हुई, और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं।
3: जैसे सर आपने बताए दिया कि सर ये जैसे बचपन में हमने भी देखे हैं सर, उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये पौधा है क्या
2: जी।
3: या आपने भी देखे हैं तो कई बुजुर्ग हैं वो कहानियां सुनाते हैं कि हम अंडोलियों को बेच के और कुछ भी मिल जाता था परचून की दुकान पे, किराने की दुकान पे, तो वो टॉफी वगैरह लाइक खाते थे सर वो। लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे इसकी ऊपर शोध का कार्य हो रहा है तो हमें पता लग रहा है सर, इसके अंदर आप देखेंगे जो इसका तेल है वो वैसे खाने योग्य नहीं है, लेकिन हमारी जो औद्योगिक जितनी भी दवाइयां हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, या आप ये कहेंगे कि जहां ग्रीसिंग एजेंट चाहिए होते हैं, वहां इसको मतलब बड़े पैमाने पे इस पे शोध का कार्य हो रहा है।

0: आती है कि चलो हम उगा भी लेते हैं इसको। उगाने के बाद में फिर इसका बिक्री का एक सबसे बड़ा इश्यू होता है, भाई अगर हमने लगा लिया तो उसके बाद कहाँ बेचेंगे इसको।
1: सर आपने बिल्कुल, एक वो कहते हैं ना सर कि हम जो काम कर रहे हैं और हमारी दुखती रग पे जो हाथ रखना है वो हमारे साथ भी है सर। और
0: जी
1: ये बिल्कुल आपने बड़ा, मतलब जो सबसे बड़ी दिक्कत या समस्या है इसमें यही है
0: जी
1: मार्केटिंग की। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं सर, इस साल हमने जो ट्रेंड फॉलो किया है, इवन सिरसा साइड जो गंगानगर से एरिया है, फतेहाबाद है हमारा, इसार से, इसार का भी काफ़ी एरिया है, नोर बादरा साइड भी, तो
0: जी
1: आप देखेंगे नोर बादरा में तो बड़ी अच्छी मंडी है ही है अरंड की। उसी के साथ अब की बार एलनाबाद सिरसा में इसके रोज रोज के प्राइस में जो
0: भाव
1: रेट
0: आए।
1: आए हैं, भाव
0: जी
1: आए हैं मंडियों के, वो रोज आए हैं अरंड
0: अच्छा
1: के।
0: जी
1: तो हमारा इस एरिया में अभी दिक्कत नहीं है, जो सिरसा फतेहाबाद इसार का एरिया है।
0: जी
1: और उधर जैसे हम रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं सर, जैसे रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़, भिवानी, ये इस इलाके में भी हमारी जो मंडी है, रेवाड़ी के किसान हैं महेंद्रगढ़ के, वो
0: जी
1: दिल्ली के पास में अपनी फसल है, मोदीनगर है, वहाँ बेच के आते हैं।
0: जी
1: इसी के साथ अगर और अच्छे, मतलब हमारी क्या है कि हमारी जो अरंड है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की, उसकी गुणवत्ता बड़ी अच्छी होती है,
0: जी
1: उसको बड़ी साफ सुथरी निकलती है, तो वो अगर गुजरात भी लेके जाते हैं उसका भी हमें हमारे यहाँ से भाव अच्छा मिलता है।
0: जी
1: तो आज के समय में मंडी की जो समस्या आपने कहा है वो काफ़ी हद तक अच्छी, मतलब हम एक पॉजिटिव की ओर हैं अगर सर हैं कि हमारे पास मंडियाँ अभी काम कर रही हैं सुचारू रूप से।
0: जी यानी कि दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ी बहुत आपको मंडी के भाव हैं वो पता करने पड़ेंगे, बाकी इसकी बिक्री हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल। और उसी के साथ ये भी है सर कि जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा,
0: जी
1: उसके हिसाब से इसकी औद्योगिक जो क्षमता है वो हमारे लोकल एरिया में भी हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ भी इंडस्ट्री लग सकती है, उद्योग लग सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी कुछ एक इसकी सुविधा हो जाएगी, हम लोकली जो मार्केट है उनमें भी बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे।
0: यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसान भाई इसको अधिक मात्रा में उगाते हैं तो उसके उत्पादन को देखते हुए कोई ना कोई उद्योग है वो भी शुरू किया जा सकता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: जी डॉक्टर साहब, ये भी एक जानना चाहूँगे कि इसको अकेले लगाया जाए या किसी के बीच में हमने कोई फलदार वृक्ष लगा रखा है या अपने वन के हिसाब से हमने पौधे लगा रखे हैं तो उसके बीच में लगाया जाए, कौन सा तरीका इसमें सही
1: सर
0: रहेगा।
1: ये फ्रूट जो आप फलदार पौधे कह रहे हो या वन
0: जी
1: कह रहे हो, उनके साथ तो हम इसकी सिफारिशें नहीं करते कि आप उनके साथ लगाओ,
0: जी
1: लेकिन जो आप कह रहे हो इंटरक्रॉपिंग या अंतर जो फसल
0: फसलें
1: है
0: जी
1: उनके साथ में सर, जैसे अलग अलग फसलें हैं हमारे, बल्कि जो किसान भाई हैं वो कर भी रहे हैं, पर्टिकुलरली रेवाड़ी के अंदर लोधाणा जड़थल गाँव है, वो क्या करते हैं पहले मूंगफली उगा देते हैं
0: जी
1: जून की मतलब शुरुआत में,
0: जी
1: 15 से 20 तक वो मूंगफली बो देते हैं, उसके बाद वो अगस्त में मतलब 15-20 दिन इसको बाद में बोते हैं। इसकी
0: जी
1: वैसे तो हम जुलाई में सिफारिश देते हैं कि 15 जुलाई तक आप इसको उगा दो, बो दो,
0: जी
1: लेकिन वो क्या करते हैं 10 से 15 दिन बाद में तो अरंड को लगाते हैं और वही 10-5 दिन पहले मूंगफली को लगाते हैं।
0: जी
1: तो सितंबर तक जब ये अरंड के अंदर फूल आने शुरू होते हैं उस टाइम तक मूंगफली के जो फल हो जाते हैं जिसको हम अंदर ज़मीन के अंदर लगते हैं, तो वो बन के मूंगफली है वो तैयार हो जाती है। तो
0: जी
1: ये एक दोनों के अंदर कोई
0: कंपटीशन नहीं होता है।
1: कंपटीशन नहीं होती, प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो
0: जी
1: ये अच्छा है। उसी के साथ जो हरी सब्जियां हैं, मूली हो गया,
0: जी
1: गाजर होगी,
0: जी
1: धनिया हो गया, पालक होगी, ये बिल्कुल अच्छे से ले रहे हैं। अगर आप फसलों में बात करो, मूंग और ग्वार
0: जी
1: बड़ी बहुत अच्छी चलती हैं, अगर आप इसकी दूरी लोगे लाइन से लाइन 150 सेंटीमीटर,
0: जी
1: तो या 5 फीट, उसमें आप 2-3 लाइन मूंग की या ग्वार की ले सकते हो।
0: जी अब लोग सब बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बढ़िया किस्म है जो कि अच्छा उत्पादन दे दें।
1: हमारी जो हरियाणा के लिए है सर, उसमें सबसे अच्छी किस्म है ICH-5, जो
0: आई
1: हमारा
0: सी
1: आई
0: एच
1: सी एच
0: पाँच
1: पाँच
0: जी
1: जी वो हमारा जो निदेशालय है, इसका तिलन निदेशालय है हैदराबाद की, वो उनके द्वारा डेवलप की गई है। उसमें
0: जी
1: हमारे यहाँ खुद के बावल में भी उसको हमने टेस्ट किया है, उस पर रिसर्च हुआ है सारा, हमने भी उस पर कार्य किया है, तो वो निकल के आई है हमारे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी किस्म वही है ICH-5, जो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले तक भी पक जाती है। और विपरीत परिस्थितियों में इसमें क्या होता है, सबसे मतलब ये ऐसी फसल है कि इसके

0: जेंडर जो हमारी जो मादा फूल है वो नर में बदल जाता है जब इसका 30 से 32 डिग्री तापमान होता है।
1: अच्छा।
0: और आर्द्रता है वो 95% से ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें भी हमारी जो ICH5 है वो काफ़ी अच्छी है और जल्दी भी पकती है ये, और इसका पैदावार भी काफ़ी मतलब अच्छी है।
1: कितना कितना
0: इसकी
1: है?
0: पैदावार सर 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक है, और किसान हैं वो 20-20 क्विंटल भी ले रहे हैं एक एक एकड़ में।
1: जी, तो इसमें बीज कितना लेना पड़ेगा?
0: 20 इसमें सर दो चीज़ें हैं, एक तो हमने जैसे बात की कि कहीं भी लगा लो, तो इसमें एक तो कम सिंचाई हमारे पास साधन नहीं है तो कमी है, तो वहाँ हम 2 किलो बीज लेते हैं, और उसमें जो लाइन से लाइन की दूरी है और पौधे से पौधे की दूरी है वो लेते हैं हम 90 सेंटीमीटर,
1: यानी लगभग 3 फुट।
0: हाँ जी
1: जी
0: लगभग 3 फीट होगी, और उसमें 2 किलो सीड लगेगा। लेकिन जहाँ हमारे पास पानी की थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं और
1: जी
0: अच्छी मतलब पूर्ण सिंचित
1: जमीन भी ठीक
0: कंडीशन
1: है।
0: है,
1: जी
0: तो वहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको पौधे से पौधे की लंबाई दूरी है वो तो हम 90 सेंटीमीटर रखेंगे,
1: जी
0: लेकिन जो हमारी लाइन से लाइन है उसकी 120 सेंटीमीटर या 4 फीट हो जाती है उसमें लगाएंगे, तो हमारा जो बीज की मात्रा है वो 1.6 kg, 1.6 किलो बीज लेंगे हम प्रति एकड़ के हिसाब से।
1: जी यानी इसमें खुद तो खुद का फासला है
0: हाँ जी
1: वो बढ़ जाएगा।
0: वो बढ़ जाएगा जो
1: जी
0: पूर्ण सिंचित है, और अगर आप इसी के साथ जो आपने बात की अंत फसलों वाला या
1: जी
0: इंटरक्रॉपिंग का
1: जी
0: अगर वो लेते हो तो 5 फीट का हम फासला कर देंगे, और बीच में 2 से 3 लाइन हम मूंग या जो फसलें हैं
1: जी
0: पालक हो गया, मूली हो गया, गाजर होगी या फिर मूंगफली होगी, ये आप ले सकते हो, हरी सब्जियां जो भी धनिया कुछ भी आप इसके अंदर मेहनत करोगे तो ये फसल आपको नीचे नहीं गिरने देगी।
1: जी डॉक्टर साहब, कितने एक दिन में तैयार हो जाए ये?
0: ये अभी सर हमारे पास जो मैंने बताया ICH5 है, हम इसको
1: जी
0: जुलाई में लगाएंगे, ये अप्रैल की आखिर तक कट के तैयार हो जाती है, तो आप ये मानो 8 से 9 महीने में ये फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब ये देखते हैं कि भाई 8 से 9 महीने में तो क्या है
1: जी
0: कि 2 सीज़न कवर कर रही हैं 2 फसलों को,
1: जी
0: लेकिन ये क्या है अगर आप इसकी इकोनॉमिक्स निकालोगे, इसकी अगर कंपेयर करोगे कि भाई एक फसल में
1: आर्थिक
0: इतनी,
1: विश्लेषण
0: हाँ
1: करें।
0: जी
1: जी
0: आर्थिक विश्लेषण करोगे एक फसल में हमें इतना रुपया मिल रहा है, 2 में इतने मिल रहे हैं, तो भी ये उन 2 फसलों के साथ में अपनी प्रतिस्पर्धा रखती है और आपको
1: अच्छा
0: अच्छा मुनाफा देने का
1: काम कर
0: मतलब
1: रही।
0: है इसमें दम।
1: जी इसके अलावा भी कोई और वैरायटी है, किस्म है?
0: हाँ बिल्कुल है सर, एक ICH66 है गुजरात की, GCH7 है, GCH8 है जो
1: जी
0: हमारे इलाके में अभी भी चल रही हैं और बड़ा अच्छा उत्पादन दे रही हैं, जैसे सिरसा गंगानगर या आप ये जो बादरा साइड है
1: जी
0: हमारा जो आदमपुर का हो गया, फतेहाबाद हो क्या होगा, तो यहाँ गुजरात की जो किस्म है
1: जी
0: GCH8-7 और ये चल रही है हमारे पास, 7 और 8 जो हैं काफ़ी अच्छी चल रही है हमारे एरिया में।
1: जी उत्पादन या कोई कीड़ा बीमारी इसमें?
0: इसमें हमारे एरिया में हम बड़े एक यूं लगा लो सर कि प्रकृति ने हम पे दया दिखाई हुई है कि इस फसल में हमारे ऊपर कोई कीड़ा आता नहीं है।
1: जी
0: शुरुआत में इसमें आता है जो फल बनता है उसमें एक छेदक होता है
1: जी
0: जिसको हम या तो इंग्लिश में कैप्सूल बोरर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलें तो उसको फल छेदक बोलते हैं,
1: जी
0: वो कीड़ा पक्का आता है सर, क्योंकि हमारे आजकल अगर आप देखोगे मानसून में तो कंटिन्यूसली बारिश रहती है, तो
1: जी
0: एक नमी सी रहती है उसकी वजह से आता है, जब पहला गुच्छा बनेगा उसके अंदर वो कीड़ा आता है, लेकिन हम उसको एक कहते हैं ना कि सावधानी बरत के
1: जी
0: एक स्प्रे आप कर दोगे
1: जी
0: तो वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा,
1: जी
0: और वो किस चीज़ का करना है वो है मोनोक्रोटोफोस। आपको क्या करना है जी, आप सिर्फ 1 ml 2 लीटर पानी में डाल दो, अगर किले का है तो 125 ml आप दवाई को 250 लीटर पानी में डालो और ये कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा,
1: जी
0: इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी।
1: इसके अलावा कोई और किस्म?
0: किस्म का तो देखो सर हम अभी खुद कार्य कर रहे हैं जैसे हमारे
1: जी
0: स्टेशन पे,
1: जी
0: तो हम भी उम्मीद है कि सर हमारी खुद की किस्में आ जाएंगी,
1: अच्छा
0: हमारा काफ़ी अनुसंधान चल रहा है,
1: जी
0: लेकिन वही है कि ये फसल एक ऐसी चमत्कारी है कि इसको समझने में ना हर साल हमारा तापमान बारिश कम ज़्यादा हो जाती
1: जी
0: है, तो ये उसी के साथ में अपना रूप बदल
1: बदल
0: लेती है, तो
1: जी
0: वो हमारे लिए भी एक चैलेंज है,
1: जी
0: लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं सर हमारी खुद की किस्में आ जाएंगी।
1: बहुत बढ़िया। तो इसमें बिजाई का तरीका क्या रहेगा?
0: इसमें बिजाई का यही है सर कि आप जैसे में आपकी जो दूरी है
1: जी
0: पहले कपास में भी, तो वही हम इसका निशान है वो गांठ सियों के बना लेते हैं, और उससे सीधा मतलब तरह से निशान जो चौराहा मतलब एक
1: आपस में मिल
0: वहां आप बीज रख

0: दो
1: जी
0: और थोड़ा सा खुरपी से आप मिट्टी हटाओ और वहाँ रख दो बीज। तो इस तरीके से आज से
1: कितनी गहराई हो, कभी ऐसा ना हो ज्यादा गहरा हो जाए जामना से गए।
0: नहीं, एक्चुअली ये बड़ा बड़ा ये भी एक मतलब इसमें सर है ही कि आप इसको, वैसे तो दिक्कत आती नहीं है,
1: जी
0: लेकिन अच्छी बात ये है कि सर हम जैसे रखते हैं तो इसको आप 3 से 4 5 सेंटीमीटर तक भी अंदर बोएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी
0: इसके अलावा सर एक और मैं बताना चाह रहा हूँ, इस फसल में सिर्फ एक ही समस्या है जब आप बिजाई करते हो, उसमें क्या है कि अगर पानी खड़ा होता है
1: जी
0: तो इसके अंदर दिक्कत आ सकती है कि पानी अगर हमारे, आजकल क्या है बारिश कंटिन्यूसली चल रही है तो पानी खड़ा हो जाता है
1: जी
0: तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है वो जड़ गलन की, पौधे गलने की। अदरवाइज अगर जैसे हम इसको प्रेफर वहीं करते हैं कि जहाँ दोमट मिट्टी हो,
1: जी
0: बलुई मिट्टी हो,
1: जी
0: बलुई दोमट जो इसके लिए सबसे अच्छी है, तो वहाँ पानी भी नहीं रुकता, वहाँ बड़ी अच्छी चलती है ये, या
1: जी
0: बरानी एरिया में तो दिक्कत नहीं आती
1: जी
0: सर।
1: डॉक्टर साहब, अगर थोड़ी सी उठी हुई क्यारी बनावें या डोर थोड़ी सी ऊंची करें तो उसमें कुछ फर्क रहेगा?
0: बिल्कुल रहेगा सर, बहुत मतलब अगर हम करते हैं, जैसे हम किसानों को भी यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा ना जो खुड़ से खुड़ की दूरी है उसको आप बेड को थोड़ा सा
1: ऊंचा उठा के
0: ऊंचाई पे रखो
1: जी
0: और उस पे अगर बोओगे तो क्या है वो पानी नीचे रह जाएगा और उसमें दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी
0: और अगर बलुई या दोमट मिट्टी है ना तो उसमें तो वैसे भी दिक्कत नहीं आती सर।
1: जी अच्छा, इसमें खाद वगैरह का भी कुछ ध्यान
0: जी
1: रखना
0: खाद का
1: पड़ेगा?
0: सर इसमें क्या है कि हम खाद जो दो बताया, जैसे एक तो कम सिंचित एक पूर्ण सिंचित,
1: जी
0: तो कम सिंचित है उसमें 32 किलो हम यूरिया डालते हैं
1: जी
0: और उसी के साथ में सर हम पूर्ण सिंचित में 48 किलो
1: जी
0: यूरिया डाल देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अब जैसे देखते हैं हम 24 किलो हम फॉस्फोरस और 12 केजी पोटास डालते हैं, और उसमें भी 24 केजी मतलब दोनों में पूर्ण में और कम सिंचित में 24 12 पोटास रहेगा। अब इसको डालना कैसे कैसे है,
1: जी
0: 16 केजी तो हम यूरिया डालेंगे सर जिस टाइम बो रहे हैं, दोनों में पूर्ण में भी और सिंचित, जो पूर्ण सिंचित होगी और कम सिंचित उनमें।
1: जी
0: उसके बाद में हम ये करते हैं, जैसे हमारी जो पूर्ण सिंचित है उसमें हम कम से कम 5 से 6 कटाई लेते हैं, तो 8 किलो यूरिया हर सिंचाई के बाद, हर कटाई के बाद जो
1: जी
0: गुच्छा हम काट लेंगे पहला, उसके बाद पानी दे दो और उसके बाद 8 किलो यूरिया आप छिड़क दो 1 एकड़ में।
1: जी
0: तो
1: डॉक्टर साहब, शुरुआत में जो हमने खाद देनी है उसका क्या तरीका रहेगा? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि इसका डोल के ऊपर ये चोब के फिर लगाने हैं, तो
0: देखो जी, आप जैसे कह रहे हो, हम जैसे किसान भी करता है या हम भी करते हैं, हम पहले खेत तैयार करते हैं तो जो ड्रिल मशीन है उसी में डाल के मिक्स करके हम बो देते हैं,
1: जी
0: उसके बाद हम अपना सुहागा मार देते हैं प्लेन करके, फिर आप उसमें बोलो या खेत से जो क्यारी सी बनाते हैं ऊपर
1: जी
0: उठा हुआ
1: जी
0: उसमें, तो हम ड्रिल से ही इसको बोते हैं जनरली।
1: जी तो इसमें फिर पानी की क्या व्यवस्था रहेगी अगर पानी नहीं लगता? वैसे तो आपने बताया जुलाई का इसका
0: जी
1: मौसम है तो उस समय तो बारिश आ जाएंगी,
0: जी
1: लेकिन अगर नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए पानी का हिसाब किताब?
0: देखो सर, अगर पानी का एक तो दो है हमारे पास की बारानी, और जिसमें हमारे पास सुविधा है पानी की,
1: जी
0: तो जो बारानी एरिया है हम उसमें कई बार क्या होता है कि भाई मानसून ऊपर नीचे हो जाता है, तो बारानी में तो यही है कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो हम सीधा ही सीधा मानसून पे निर्भर कर रहे हैं सर,
1: जी
0: तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेट आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरी क्या है, एक दो पानी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम ये सिफारिश करते हैं 40 से 45 दिन पे एक लगा दो,
1: जी
0: 80 से 85 पे दूसरा पानी लगा दो। तो इस क्रॉप में एक ये है कि भाई अगर इसमें कुछ पानी की क्वालिटी अच्छी भी नहीं है तो
1: जी
0: भी ये सर्वाइव करेगी, ये सहन शक्ति है इसकी।
1: जी
0: पूर्ण सिंचित में ये है सर कि हमारा, वैसे तो हम मानसून का जो देख रहे हैं 3 से 4 तक, सेप्टम 3 4 साल से जो देख रहे हैं एक,
1: जी
0: कि सेप्टम्बर तक बारिश हो ही रही है, जुलाई से शुरू होती है, इवन अक्टूबर 10 तक भी चल जाती है, तो
1: जी
0: उस टाइम तक हमारा पहला गुच्छा तैयार मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है, अक्टूबर की आखिर में हम उसको काट लेते हैं, तो हमारा पहले जो गुच्छे कटने के तक हमारे को पानी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास है तो आप 25 से 30 दिन के बीच अंतराल पे एक दे दो सर्दियों में, और 20 से 20 दिन के 25 दिन के अंतराल में गर्मियों में दे दो
1: जी
0: एक पानी अगर आप।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें गुच्छे कितने के विकसित हों और कितने दिन के बाद में तोड़ने चाहिए उसका क्या तरीका रहेगा?
0: सर जो गुच्छा बनता है इस फसल में, आप ये मानिए कि 95 से 105 दिन के बीच में पहला गुच्छा बन के तैयार हो जाता है। और
1: जी
0: उसकी आपने जो पूछा है कि किस स्टेज पे हम काटें, जब भी 10% वो गुच्छा जैसे हरे रंग का है तो वो थोड़ा सा
1: भूरा भूरा
0: बूरा बूरा
1: सा
0: सा
1: बदलना
0: होना
1: शुरू
0: लग
1: हो जाए।
0: जाए
1: जी
0: या अरे में भी ज़्यादा हरा सा दिखने लग जाए, जो सच उसका सही कलर है उससे थोड़ा सा 10% अगर वो गुच्छे अगर अपना रंग बदल रहे हैं तो
1: जी
0: आप उसको उस टाइम काट दो,
1: जी
0: सारे गुच्छों को काट दो और एक कड़का पानी दे दो और 8 किलो यूरिया ले दो, तो
1: जी
0: उससे आपकी पैदावार है वो बहुत अच्छी भी होगी और बढ़ेगी भी।
1: तो जो हमने गुच्छे तोड़ लिए हैं, काट लिए, जिसमें थोड़ा सा हरापन रह रहा है,
0: जी
1: तो उसका क्या करना, किस तरह, मतलब उसको धूप में सुखाना
0: उसको
1: है
0: आप
1: या
0: सर
1: क्या?
0: जहाँ आपके पौधे हैं वहाँ एक जगह भंडारण कर लो,
1: जी
0: एक जगह आप उसको भंडारण करके रख लो, धूप से वो आपको देखोगे 5 से 7 10 दिन में भूरा हो जाएगा। फिर आप उसको जहाँ इकट्ठा करते हो, आपके पास कोई रूम बनाया हुआ है या कोई कमरा है
1: कमरा है,
0: वहाँ आप
1: छांद है,
0: उसको रख
1: या
0: सकते हो
1: जी
0: और एक साथ निकाल सकते हो, जब 4 से 5 कटाई के बाद आपके पास सारा उसका पैदावार आ जाए या सारे गुच्छे आपके पास आ जाए।
1: जी तो तब तक उनको अलग अलग करके रखते रहे कि भी ये पहली कटाई के हैं, ये दूसरी कटाई के हैं, और उतना समय लेके वो आपके पूरे तैयार हो जाएंगे।
0: हाँ जी, जैसे आप ये है कि पहली कटाई दूसरी, देखो वो अपना तो रिसर्च का कार्य अनुसंधान
1: जी
0: कर रहे हैं, हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसान को तो एक ये होता है सर सारी पैदावार एक ही टाइम चाहिए, तो
1: जी
0: उनको
1: जी
0: वो इकट्ठा कर सकते हैं, उसके अंदर जो लकड़ी होती है
1: जी
0: उसको आप लकड़ियों से पीट के और एक साइड कर दो, जो गुच्छे गुच्छे हैं उसको आप भंडारण में रख लो।
1: तो
0: और
1: ये इसका जो बीज निकालने का वो क्या तरीका रहेगा, क्योंकि
0: बीज का सर
1: इसके ऊपर
0: हमारे
1: कांटे से
0: जी
1: भी
0: जी
1: होते हैं
0: जी
1: तो।
0: जी ये आप जो कह रहे हो कांटे होते हैं, हमारे पास थ्रेसर हैं,
1: जी
0: हमारे जो HCU है अपनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
1: जी
0: इसके अंडर हमने सर हर KV के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमने
1: जी
0: थ्रेसर दिए हुए हैं, बांटे हुए हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट में किसान हैं वो उनको लेके भी जाते हैं, उनको सिर्फ अपनी ID देनी होती है
1: जी
0: और वो वहाँ से थ्रेसर ले जाते हैं अपना और वापस दे जाते हैं निकाल के।
1: जी
0: तो कई कई जगह हमने दो दो तीन तीन भी दिए हुए हैं, जितना वर्कलोड है उस हिसाब से। और अब तो किसान भी अपने मतलब थ्रेसर खुद भी रखने लगे हैं, क्योंकि इसका जिस हिसाब से एरिया बढ़ रहा है या एक तरह से
1: जागरूक
0: इसकी
1: हो
0: जो
1: रहे हैं लोग।
0: जागरूकता है, और दूसरी फसलें हैं जैसे आप देखोगे खरीफ में, पहले हम बचपन में देखते थे कि कपास लगती थी, बाजरा लगता था,
1: जी
0: लेकिन अब वो फसलें कहीं ना कहीं मौसम की मार से हमको एक जैसे अब धान पे हम आगे हैं
1: जी
0: कपास की जगह, तो
1: जी
0: वो फसलें अलग मतलब ना बोने की वजह से या वो परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि उसको बो सके, तो कैस्टर अपने आप को मतलब बढ़ा रहा है अपने आप ही।
1: जी यानी कि जिन भाइयों के ये समस्या आती रही है कपास में,
0: जी
1: तो वो इसकी तरफ भाई ध्यान दे सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी दे
1: जी
0: सकते हैं। इसी के साथ सर एक मरगोजा होता है जो सरसों में,
1: जी जी
0: तो उस मरगोजा क्या करता है, सरसों का तो बिल्कुल एक तरह से बहुत पैदावार कम कर देता है, तो
1: जी
0: उस एरिया में भी हम कैस्टर को अरंड को ले सकते हैं।
1: जी और उसके बाद में इसका भाव देख के कौन सी मंडी में कौन सा भाव क्या कुछ चल रहा है, उस हिसाब से अपने
0: हाँ जी
1: बिक्री कर सकें।
0: बिल्कुल सर
1: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली, बढ़िया और सभी तरह की ज़मीनों में चलने वाली फसल है ये, और सिंचित अवस्था कह ले और ये वरानी अवस्था कह ले, दोनों में ये अच्छी पैदावार दे देगी, और क्योंकि अब इसका कम जगह पर इसका उत्पादन हो रहा है तो भाव भी इसके बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर आत्मन पुनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सर।
1: धन्यवाद।
2: तो भैया ने ये सुनी बातचीत, डॉक्टर साहब ने अरंड की जो खेती है उसके बारे में बड़ा विस्तृत तरीके से बताया, क्योंकि हमारी जो तेल वाली मुख्य रूप से जो फसलें हैं उनके भाव भी अपना अच्छे मिल जाए। और भैया देखो, हम खेती करें हैं उसमें तिलन भी करें हैं, दलहन भी करें हैं, या अनाज वाली करें हैं, मोटी फसल करें हैं, धान की है, गन्ने की है, कपास की सारी फसल करें हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारे पास जो हम बात करें भाई जो वृक्षों की, वृक्ष हमारे लिए एक बहुत अच्छा मित्र है और उनका जितना भी हम पालन पोषण करें वो बहुत कम है। क्योंकि एक तो जितने हम कृषि वानिकी की बार बार बात करते हैं, कृषि वानिकी में हम अनेकों प्रकार के जो वृक्ष हैं वो लगा सके हैं, उनका हमारी जो फसल है उसके ऊपर भी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो मेड़ हैं, जो डोड़े हैं हमारे, उनके ऊपर हम इनको लगा सके हैं। और अपने खेत में एक हरी भरी हरियाली के बारे में बात करें या फिर एक अतिरिक्त आमदनी की बात करें, वो दोनों चीज़ वृक्षों से हमने मिले हैं। भाई बहुत से ऐसे वृक्ष भी हैं जिनका हमारे जो दैनिक दिनचर्या है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा महत्व है। उसमें देखो हम बात करें सहजन की, सहजन का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे पशुओं के लिए भी आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अनेकों प्रकार की जो दवाई हैं आदमी की उससे बनती हैं सहजन के पौधे से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यदि हम पशुओं को सहजन के पत्ते खिला रहे हैं, उनको टेहनियाँ काट कर खिला रहे हैं, तो वो भी हमारे जो पशुधन है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उसमें चाहे कैल्शियम की हम बात करें, फास्फोरस की बात करें, या उनके जो और भी जो जिसको जैसे हम मिरर मिक्सर की बात करें उस तरह के जो हम चीज़ दे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो सहजन के पौधे हैं उसमें मिले हैं। लेकिन और भी जैसे हम शीशम की बात करें या देसी किक्कर की बात करें या और जैसे नीम है और शहतूत है शीशम है, ये सारे के सारे जो पौधे यदि हम अपने जो मेड है या डोड़े हैं उनके ऊपर लगाएंगे, बहुत लंबे समय तक तो ये हमने छाया भी देंगे और उसके बाद फिर जब ये बहुत भारी हो जाएंगे तो वो फिर हमने एक अतिरिक्त आमदनी वो भी देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जब संभव हैं जब हम वृक्षों का पालन पोषण करेंगे। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसको हमने किसी भी समय नहीं भूलना चाहिए। और एक जो भाई हर साल हमारे जो हम नए वृक्ष लगाए हैं उनकी देखभाल करना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी परवरिश करना, उनमें पानी देना, उनमें खाद देना, ये सारी चीज़ें हमारा एक फ़र्ज बना है, तो ये हमने करना चाहिए। ये कुछ बातें थी कृषि जगत में। और ईव भाइयों कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार में आज फोन इन कार्यक्रम है चौपाल से भाइयों के साथ लाइव, तो उसमें बातचीत करेंगे। भाई जो हमारे श्रोता भाई हैं अपना फ़ोन करें और अपना जो भी सुझाव है वो दें, उसमें हमारे जो कार्यक्रम संबंधी जो भी उनके भाव हैं, भाई हम कैसा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें क्या तरह कुछ तरह की मान लो कोई कमी भी है तो वो भी बताएं। क्योंकि जब तक हमने कमियों का पता नहीं चलेगा जब तक हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। आप कार्यक्रम में सुधार करवाने के लिए हमारे पास फ़ोन करें, हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं तो इन बातों के उसमें हम फ़ोन कर सकते हैं। नंबर विशेषकर हमारे ज़्यादातर जो भाई हैं श्रोता उन सब के पास हैं, लेकिन फिर भी हम नंबर बता दें। रोहतक का एसटीडी कोड है 01262, और तीन फ़ोन लाइन काम करें, उसमें 255-446, 255-447, 255-448, ये तीन फ़ोन लाइन काम करें हैं। इन पर हमारे जो श्रोता भाई हैं वो फ़ोन करें और अपना सुझाव दें कार्यक्रम संबंधी। और इसमें एक बात का ध्यान रखें कि भाई कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे एक तो जो हमारे श्रोता हैं उनके उस पर बात जाओ, भाई ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, मनोरंजन का भी है, अपने सुझाव दो, उस जो भी कमी होगी उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक सभी भाइयों से अनुरोध है कि भाई जो भी भाई अपना जो सुझाव दे वो थोड़े शब्दों में दे, क्योंकि लंबे समय तक यदि हम बात करते रहे तो फिर जो हमारे दूसरे श्रोता भाई हैं वो इससे वंचित रह जाएं। तो देखते हैं फोन। हेलो हेलो,
3: राम राम बाबू
2: जी। राम राम, नाम बताओ।
3: रमेश बोल रहा जी, गांव कलोज।
2: रमेश कहाँ से बोलो रमेश भाई?
3: कलोई गांव से बोल रहा
2: हूँ। रमेश, हाँ रमेश भाई।
3: हाँ जी, प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग गए जी आपसे।
2: अच्छा
3: हाँ, जो जी जी तो आज अभी अभी थोड़ी देर पहले अरंड की जानकारी दी थी।
2: हाँ,
3: अरंड देखने में कम आ रही है।
2: देखो जो अपना क्षेत्र है ना, जैसे आपके ज़्यादातर कलोई का क्षेत्र भी इस तरह का है कि भाई जहाँ पानी ज़्यादा भर गया है तो वहाँ पे कम अरंड की खेती हो है, लेकिन बहुत सा क्षेत्र अपने हरियाणा प्रदेश में भी इस तरह का है जहाँ अरंड की खेती हमारे किसान भाई हैं वो कर रहे हैं।
3: हाँ जी, और एक भी मौसम में ये सा हो रहा है मतलब जो बरसात का।
2: हाँ,
3: तदुपरे जैसे लहरें हैं जी।
2: हाँ
3: अरे जी, तो पर आला। ये मतलब सुनवा अगर वो जी
2: अच्छा
3: तो बिल्ला रे सुनवाओ ना जी एक मुकेश नाथ के उस पर सुनवाओ लेकिन एक बहादुर नाथ है बनवारी नाथ है उनके सुनवाओ बड़ी अच्छी
2: नहीं वो ऐसा रमेश जी कि हम जितने भी ये हमारे मान लो कलाकार हैं वो चाहे बीन बजाने वाले हैं बांसुरी बजाने वाले हैं चाहे गाने वाले हैं उनको लगभग ये कोशिश करी जा है हर एक की जो को मौका मिलना चाहिए
3: तो जो जब भी आपने सुना मुकेश नाथ के सुना लेकिन पहले बनवारी नाथ के बहादुर नाथ के सुना
2: अच्छा
3: उनके भी सुनवा
2: चलो उनके भी सुनवा देंगे और बताओ
3: अरे जी परसों साका सुनवाई बड़ी अच्छी लगी
2: क्या सुनवाई
3: साका
2: साका
3: अच्छा सुनवाई भी बड़ी अच्छी लगी
2: अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है और इसी तरह
3: प्रोग्राम जी आपके मतलब बहुत ही बढ़िया लगे
2: चलो
3: थी,
2: कोई नहीं फरमाइश है आपको कि ये फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे क्योंकि ये बिन का जो टाइम भी हो है और इसमें पर जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बिल्कुल जरूर ठीक है धन्यवाद रमेश जी हेलो
4: क्षतिग्रस्त हो गई है सड़क रेल और
2: हेलो हेलो हेलो हेलो
5: नमस्कार भाई सुरेंद्र सिंह
2: जी नमस्कार जी नाम बताओ
5: चंदगी राम बाबू जी गाँव करौली डिस्ट्रिक्ट
2: जी चंदगी राम जी कैसे हो
5: बढ़िया आपकी दुआएं हैं
2: चलो परमात्मा की हैं दुआएं तो बरसात कुछ हुई है
5: माजी बरसात तो कैसा दिल बनी हुई थी
2: अच्छा
5: फसल तो लागी है सारे एरिया में
2: चलो प्रोग्राम कैसे लग रहे हमारे ये बताओ
5: क्योंकि बहुत बढ़िया लग रहा है जी
2: आप अपना सुझाव दो इसमें क्या और हम इसको
5: सुझाव तो 3 तारीख ने सतगुरु डॉक्टर आए तो कृषि का बारे में बताई
2: हाँ
5: बहुत बढ़िया लगी जी एकदम
2: चलो बहुत अच्छी
5: शनिवार ने संपूर्ण दिया था डॉक्टर साहब जल वितरण का बारे में बता रहे तो बहुत बढ़िया
2: चलो चलो जानकारी हाँ। अच्छी लगी
5: बहुत बढ़िया चल रहा है जी प्रोग्राम
2: चलो चलो धन्यवाद चंदगी राम जी
5: धन्यवाद
2: हेलो
6: हेलो
2: हाँ जी नाम बताओ
6: जी सुरेंद्र भाई जी को मेरा नमस्कार
2: जी राम राम नाम बताओ
6: राम बाग और सुरेंद्र जी से प्रकाश बाबू का बोल रहा
2: हूँ जी प्रकाश जी कैसे हो
6: जी हम तो बहुत बढ़िया हैं
2: हाँ प्रोग्राम कैसे लगते हैं
6: प्रोग्राम सर बहुत बढ़िया हैं लेकिन सर एक समाचार मिला था नैना सिंह का
2: हाँ
6: ये आज नहीं रहे हमारे लिए
2: चलो ये तो भाई एक कुदरत का नियम है परमात्मा की दया है
6: सर हम तो राष्ट्रीय कवि लेना सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित
2: बहुत बहुत आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी उनको श्रद्धा सुमन
6: करते हैं कि ये दिव्यांग आत्मा को शांति मिले
2: बिल्कुल
6: शांति प्रदान
2: जी जी जी
6: तो सर अच्छा है भला हुआ सर जगदीत भाई अनिल भाई
2: हाँ वो एक दिन गए थे और उनकी एक उनके घर पे रिकॉर्डिंग करके ले आए थे और वो सुनवाए भी और आगे आने वाले समय में भी जरूर सुनवाएंगे
6: बहुत ही अच्छा हो गया सर इनको भी सुनवाते रहना सर और इनके सर 3 सॉन्ग हैं
2: हाँ
6: ये 3 सॉन्ग हैं सर इनको बारी बारी से लगातार ही सुनवा दी
2: कौन से हैं
6: ये तो ये लक्ष्मी है इनका
2: लक्ष्मी
6: और ये नार सिंह है और एक अपना शिव विवाह
2: अच्छा
6: इनके अपने रोहतक में 3 सॉन्ग है सर
2: अच्छा अच्छा
6: इनको बारी बारी सुनवा दिया सर
2: जरूर क्योंकि जो शिव विवाह है ये सावन का महीना है जैसे इसमें
6: हाँ, हाँ,
2: तो ये जरूर सुनवाने की कोशिश करेंगे हमने मैंने नोट कर लिया ये जरूर प्रकाश जी सुनवाएंगे
6: हाँ, जी,
2: चलो धन्यवाद प्रकाश जी
6: धन्यवाद
2: हेलो हेलो
7: हेलो राम राम जी
2: जी राम राम नाम बताओ
7: जयवीर सैनी
2: जयवीर जी जी जयवीर जी कैसे हैं
7: बढ़िया जी आप सुनाइए
2: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं
7: बढ़िया लगे जी आपका सुबह लोक संगीत बढ़िया लगे जी आज पासीनियर से
2: अच्छा
7: बड़ा सनिया को बहुत बढ़िया लगे जी
2: चलो और कार्यक्रम में कोई सुझाव आपका हो या कोई फरमाइश कोई हो
7: फरमाइश ऐसी चिट्ठी तो मिलते नहीं जी
2: क्या
7: जो हम पत्थर डालते थे पहले वो मिलते नहीं है चिट्ठी
2: मिलते नहीं कैसे
7: डाकखाने में
2: हाँ
7: पहले अपन पसंद भेजते थे हम
2: हाँ
7: खाली पत्र
2: हाँ हाँ नहीं वो मिलने चाहिए वो पत्र तो अब भी आए हैं वो
7: आते हमारे यहाँ मिलते नहीं
2: चलो देखो कहीं से वो तो प्रबंध कर लो ये तो डालोगे तो जरूर आपके नाम बोलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
7: हाँ जी
2: ठीक है ना।

0: ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम बता।
1: हेलो,
0: हाँ जी हेलो, नाम बता।
1: नमस्कार नमस्कार सर,
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताओ।
1: मैं मंजीत बोल रहा हूँ सर, सिंगाणी से। हेलो,
0: मंजीत जी
1: मैं बताऊँ जी बात एक बार।
0: जी कराओ
1: हाँ, राम राम साहब है।
0: जी। राम राम जी, कैसे हो?
1: 85 साल की उम्र होगी, आज टाइम फोन कौन मिले, आज मिले है।
0: ओ, बहुत बढ़िया बात, आपकी
1: जब
0: आवाज हमने भी सुनकर बड़ी खुशी हुई।
1: स्टेशन, जब स्टेशन होया जी, चालिया ना दिल्ली, आज भी पहले जिद का रेडियो रखो मैं।
0: अच्छा,
1: अच्छा, तो ये सुनाया करो, तभी बढ़िया है कि सांग बणदे भी को कई
0: अच्छा
1: फरमाइश हो जी। इस तरह ये रांझा हीर का कदे सुनाया है कोने? 80 साल हो गए, रांझा हीर का सुनाओ।
0: कई सांग ऐसे हैं कि जो हमारे पास उसके हैं ना, होंगे तो ये जरूर नोट कर लिया। एक तो आपने बणदेवी का बताया है,
1: हाँ, बणदेवी का तो है, यो रांझा हीर का सुनाओ।
0: एक ईरान जाएगा। हम कोशिश करेंगे इसको ढूंढ के आपको सुनवाने की,
1: ठीक है
0: ठीक
1: जी,
0: है ना?
1: ठीक है, प्रोग्राम
0: और
1: ठीक चल रहे हैं। कदे कदे गड़बड़ तो है, रोज तक
0: चल,
1: बनावा बात पड़ी रही कोनी।
0: नहीं कोई बात नहीं, वो एक बार बीच में थोड़ा टावर में दिक्कत आ गई थी और वो ठीक हो गया। अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखो। राम राम जी।
1: राम राम। हेलो
0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताओ।
1: नाम मांगेराम बोल रहा भाई जी, सुरेंद्र साहब।
0: जी मांगेराम जी, कैसे हो?
1: बढ़िया बढ़िया
0: हाँ सुनाओ मांगेराम जी।
1: बढ़िया जी, कोई कमी कोनी जी,
0: अच्छा
1: गाना बजाना खूब,
0: हाँ,
1: कार्यक्रम बढ़िया लग रहा जी।
0: कार्यक्रम बढ़िया लग गए हैं। कोई सुझाव हो, कोई आपकी फरमाइश हो।
1: सुझाव ये सामने, या बारिश की टाइम आएगी, सामने का गीत लाओ जी।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: सामण का तो जरूर चलाओगे। सामण में तो सामण के चल लेंगे, फागण में फागण के चल रहे हैं। कोशिश तो ये रहेगी भाई।
1: आई बारिश की टाइम आ गई, ये लगाया करो
0: हाँ, ये
1: जी।
0: हमारे एक श्रोता और थे जो रमेश जी, उन्होंने भी ये सिफारिश करी कि भाई जो बीन का लहरा है या साका सुनवाना है, ये इस तरह की जो फरमाइश
1: हाँ
0: है
1: हाँ ये बढ़िया लग रहे हैं जी, आजकल मौसम के हिसाब से।
0: मौसम के हिसाब से। देखो, कार्तिक में यदि हम फागण के चलाऊं, फागण में कार्तिक के चलाऊं या सावन के चलाऊं, तो ये अच्छे नहीं। तो जो समय
1: नहीं
0: मौसम
1: नहीं
0: के हिसाब से है, हमारा खान पान भी, हमारा मनोरंजन भी, जो सारा का सारा है, वो मौसम के हिसाब से होना चाहिए।
1: हाँ हाँ
0: जरूर
1: हाँ
0: कोशिश करेंगे मांगेराम जी, जो हमारे श्रोता हैं उनकी इस फरमाइश को हम पूरा करने
1: हाँ तो
0: की।
1: पुराना सोचता, रोज का ये लाई रखा हमें स्टेशन है, स्टेशन
0: बिल्कुल
1: में थोड़ी सी खराबी तो आवा सुरेंद्र भाई जी।
0: ऐसा है मांगेराम जी, क्या है कि एक बार पहले कुछ गड़बड़ हो गई थी, टावर गिर गया था।
1: हाँ, कई दिन बंद रह गया था।
0: हाँ, काफ़ी लंबे समय तक वो बंद भी रहा। बहुत से हमारे जो श्रोता हैं वो इससे मतलब नाराज़ भी हुए कि भाई वो जल्दी क्यों ठीक हुआ, लेकिन अब
1: मेरा
0: ठीक हो
1: तो
0: गया।
1: साहब, हम तो टेम पूरी तो हमारी करनी पड़े, दिल्ली लांदा या और कड़ा
0: समझ गए
1: लांदा।
0: समझ गए। लेकिन ऐसा मांगेराम जी, कोशिश की और ये ठीक भी हो गया और अब आपकी सेवा में है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें
1: हाँ,
0: छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको
1: थोड़ी कमी आवा जी, कदे कदे कट जाए। हाँ
0: जी, कोशिश यही रहेगी भाई इसको भी ठीक करने की, जल्दी कोशिश करी जा।
1: ठीक है जी,
0: ठीक है,
1: राम राम।
0: धन्यवाद मांगेराम जी। राम राम। हेलो।
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार, नाम बताओ जी।
1: सुरेंद्र सांगवान जी, गांव बिरोली जिला दीन जी।
0: सुरेंद्र सांगवान
1: हाँ जी,
0: जी। सांगवान साहब, कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया जी, आप सुनो, रोहतक परिवार की जी।
0: बिल्कुल, बेरोतक परिवार ठीक है, आकाशवाणी परिवार। और जो हमारे श्रोता हैं, यदि वो सुझाव देवें तो शायद हम इन कार्यक्रम को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपका क्या सुझाव है?
1: सुझाव तो जी, एक तो रेडिया कौन चलता जी, मारे 10-15 दिन हो लिए जी, हम दी आई थी जी, 5 जी।
0: नहीं, ये अब तक तो शिकायत नहीं आई है, क्योंकि इस बारे में भी, टावर के बारे में कई की शिकायत तो आ ली, लेकिन ये नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं चला।
1: FM तो चल रहा है जी, उस पर जो रेडियो पे भी
0: हाँ
1: मीडियम वेव चल रहा है, वो कौन चलते जी।
0: अच्छा, मीडियम वे नहीं चल रहा।
1: हाँ जी हाँ, और रेडियो पर, फोन पर भी सही चल रहा है जी, रेडियो में सही चल रहा है, FM बदले का बैंड है।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: चलो, इसको भी ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। और कोई सुझाव आपका?
1: कार्यक्रम सारे बढ़िया लगा जी,
0: चलो बहुत अच्छी बात
1: बिल्कुल
0: है।
1: बहुत बढ़िया। शक्करवाला नाटक सुना था, बहुत बढ़िया था जी वो।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: चलो, देखो आपको पसंद आना चाहिए, जो हमारे श्रोता हैं उनकी जो फरमाइश से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा
1: फरमाइश
0: से
1: पूरी, सारी फरमाइश पूरी हो
0: पूरी
1: जी।
0: कोशिश ये करी जावे। कोई भी भाई, कोई मान लो जैसे रागनी की बात करे, भाई ये रागनी हमने सुनवा दो, कोशिश करते हैं हम उसको पूरी करने की।
1: ना ना, जमा पूरी हो जी, सही सुनाओ,
0: लेकिन
1: टेम
0: कई
1: पर बढ़िया।
0: लेकिन कई बार क्या है कि हर एक जो फरमाइश है वो पूरी नहीं हो पाती। कई बार जो हमारे ढूंढने में कमी रह गया है, जैसे कोई रागनी है, कोई नाटक है, कोई सांग है, तो ये कई बार ढूंढने में भी रह गया है। तो
1: हो
0: कोशिश,
1: जाए तो
0: लेकिन फिर
1: छोटे
0: भी
1: वाले भी तो हो जा रहे जी,
0: कोशिश

0: ये रहब है जो हमारे श्रोता हैं उनकी हम जो भी सिफारिश है उसको पूरा करें।
1: करमपाल की तो अपने तो रहे कुंजिया
0: नहीं, करमपाल की रागनी अपने पास सुरेंद्र जी हैं नहीं।
1: हाँ जी हाँ
0: हाँ, कोई नहीं, फोन किया इसके लिए आप।
1: जी बहुत बढ़िया, अजीब बात हुई आपके।
0: तो धन्यवाद,
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: हेलो हेलो
2: भाई पुनिया साहब, राम राम
0: जी। गिल साहब राम राम, कैसे हो?
2: बिल्कुल ठीक है जी, आप सुनाओ कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक। बरसात कुछ हुई है?
2: बहुत बढ़िया हुई आज, बहुत ही बढ़िया।
0: आज बढ़िया होगी?
2: बहुत बढ़िया।
0: अच्छा
2: बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया।
0: अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात
2: मतलब
0: है।
2: मानसून की पहली बारिश है।
0: हाँ?
2: बहुत अच्छी बारिश हुई।
0: चलो पहली बरसात अच्छी हुई है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वे बरसात के सारे उनका जी लग गया है।
2: हाँ, बिल्कुल,
0: और
2: बिल्कुल।
0: अब तो जो ज़्यादातर हमारी फसलें हैं पानी मांग रही थी, सूखे में थी, और पहली बरसात यदि अच्छी हो जाए तो आगे मान लो थोड़ी बहुत भी चल जाए तो उसमें काम चलता रहे।
2: पुनिया साहब एक सिफारिश है।
0: हाँ बोलो।
2: आज मानसून चालू होगी है तो लोगों को पेड़ पौधे लगाने के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दो तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: गिल साहब अब आप प्रोग्राम सुन रहे हो तो इससे पहले मैंने कृषि वानिकी पे ही बात की है।
2: बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं।
0: और जो हमारे जो श्रोता हैं वो भी इस चीज़ में, मैं तो ये कहूँगा भाई हर जो भाई है वो कम से कम एक पौधा जो इस मौसम के नाम से
2: बहुत बहुत अच्छे
0: जरूर जरूर लगाए।
2: इसी तरह अगर सारे लगाएंगे तो हरियाली अपने
0: और फिर रही बात, देखो एक सिर्फ मान लो हमने कहीं से भी मान लो नर्सरी से चाहे हम मोल ले आए हैं या फिर चाहे फ्री मिल रहे हैं, उसको सिर्फ ये नहीं कि हमने ले आकर नरे कुंड में रख दिया, उसको लगाना है और उसकी पूरे उसको पूरे साल तक उसको हमने पालना है।
2: बिल्कुल अच्छी तरह पालना है तभी बात बनेगी।
0: यदि हम उसको पाल नहीं रहे तो ये हम और पाप कर रहे हैं कि भाई उसको और भाई लगाता तो उस पौधे की हमने जान निकाल दी।
2: बिल्कुल ठीक हो।
0: इसलिए हमारी एक सही बात यह है कि भाई हमने जिस पौधे को लगाना है पूरे साल भर जिस तरह हम एक बच्चे की संभाल रखे उसी तरह उस पौधे की संभाल हमने रखनी है। गिल साहब
2: ठीक है, आज
0: रोहतक कैसी है? रोहतक में आज कैसी भी बारिश नहीं है।
2: है जी?
0: नहीं बिल्कुल बारिश नहीं है आज।
2: अच्छा
0: हाँ बिल्कुल बारिश नहीं है।
2: ठीक है जी, हमारे बहुत बढ़िया बारिश है।
0: कोई नहीं, भेजियो हमारे यहाँ रोहतक सोनीपत का नबी है।
2: हाँ भेज देंगे भेज देंगे।
0: चलो ठीक है, धन्यवाद गिल साहब। हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार जी, सुरेंद्र जी।
0: जी जी नमस्कार, नाम बताओ जी।
3: जी मैं सतपाल शर्मा, गांव ओंगद जिला करनाल।
0: जी जी सतपाल जी कैसे हो?
3: हाँ जी ठीक है जी।
0: मी पानी की बताओ पहले तो।
3: बस जी बारिश तो भी हुई नहीं। हल्की बारिश ही कभी कभी, हल्की सी हुई है चार पांच दिन पहले।
0: अच्छा, क्योंकि अब एक हमारे साथी हैं पुराने श्रोता हैं गिल साहब बादल सिंह जी, उनका फोन आया था, वो कह रहे थे बहुत अच्छी बरसात हुई है।
3: हाँ जी हाँ जी सुना था जी।
0: हाँ तो मैं भाई सतपाल जी ने भी पूछ लें भाई करनाल की तरफ क्या है
3: जी।
0: कोई नहीं, हो जाएगा, अपना भी नंबर आवेगा।
3: अच्छा जी, एक मेरे चाचा जी राम शर्मा, उनकी भी राम राम
0: जी। बहुत बहुत राम राम, और आकाशवाणी परिवार की तरफ से उनको राम राम।
3: हाँ जी, वो 85 साल के आज क्या कह गए थे मैं तो स्पेशल।
0: अच्छा,
3: वह मेरा नाम नहीं भी लिया था ना पिछले चक्कर में।
0: तो फिर हमारी तरफ से भी उनको स्पेशल है कहना है, बस स्पेशल आकाशवाणी वालों की तरफ से राम राम आपको आई है। गांव कौन सा बताया आपने
3: जी? ओंगद है, निशन के पास।
0: ओंगद
3: जिला करनाल।
0: अच्छा ठीक है।
3: हाँ जी, प्रोग्राम तो जी सब बढ़िया है।
0: हाँ
3: बस उस दिन फोन मिल जाए अपने परिवार के बंदे से बातचीत करके निहाल हो जाए
0: जी। देखो आपके जो फोन आए हैं उनको सुनकर हम भी बहुत खुश हुआ हमारे प्रोग्रामों के बारे में, क्योंकि हम जो भी मेहनत करें हैं कार्यक्रम बनाने में ये कोशिश करें भाई हमारे जो श्रोता हैं उनको पसंद आने चाहिए। और जब आपकी तरफ से ये हमने हरी झंडी न्यू मिल ली है भाई, हमने बहुत बढ़िया प्रोग्राम लग गए हैं तो हमारा दिल भी खुश हो गया है। और देखो ये नहीं भाई हमारी कोई कमी है तो वो भी हमने बताओ ताकि हम उस कार्यक्रम को आगे ठीक कर सकें। सुझाव देना बहुत जरूरी है।
3: हाँ जी सुरेंद्र जी, पर सांग मच बोले है कर रहे थे।
0: हाँ
3: पता नहीं आपके पास रिकॉर्ड है या ना है, अगर हो तो वो किसी दिन सुनवाई हो।
0: चमोले?
3: हाँ चमोले वो कर रहे थे।
0: नहीं चमोले आ करते, वो तो दान देने वालों के नाम हो आकर दे।
3: हर एक जैसा कल हुए किस्से थे नहीं?
0: हाँ
3: उनमें भी बुला कर पढ़ा कर था गाँव में।
0: अच्छा
3: किताब में था।
0: अच्छा
3: पिंगला बर्तरी का।
0: अच्छा
3: किससे पढ़ा करता चलो।

0: रिकॉर्ड ना होंगे।
1: नहीं वो तो नहीं है, बाकी सांग हैं वो जरूर सुनवाएंगे, और कई सांग हैं आप बहुत अच्छे बढ़िया सांग हैं जिनकी सिफारिश भी आवे है तो वो आपको जरूर सुनवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी सतपाल शर्मा जी। हेलो हेलो हेलो हेलो
2: रामचंद्र भाई जी।
1: राम राम जी, नाम बताओ।
2: हाँ जी, बलवान बोल रहा है तरोड़ से।
1: बलवान जी?
2: हाँ जी।
1: जिला कौन सा अपना बलवान जी?
2: झज्जर जी।
1: झज्जर, बरसात कैसी हुई है?
2: अब तो थोड़ी हल्की है जी, परसों प्रलय दिन हुई थी।
1: अच्छा, परसों प्रलय दिन हुई थी, कुछ चल्या काम हा बुआरा का?
2: हाँ, चल गया जी।
1: चलो अच्छी बात है। आज कैसी हुई है?
2: आज नहीं हुई जी।
1: आज नहीं हुई, चलो हम अपने यहाँ रोहतक में भी नहीं हुई है और झज्जर नहीं हुई, थोड़ा जींद अच्छी बरसात हुई है, बहुत अच्छी बढ़िया बात है। हाँ तो हमारा जो कार्यक्रम है उसके बारे चंद करण।
2: हाँ जी।
1: अच्छा, बाजे भगतजिया का?
2: हाँ जी।
1: ठीक,
2: दीप चंद जी गावनियां पहले चली हुआ करते वो ऐसे जी।
1: भाई देखो देख, इसके बारे में बलवान जी ज्ञान नहीं, वो
2: मैं बताऊं जी, तो बिल्कुल उनसे मिलना है।
1: हाँ वो देखो मिलती होगी जरूर, वो हो गए, लेकिन ये अगले जो सोमवार है उसको पूछ के बता सके।
2: अच्छा,
1: ठीक है ना। दीपचंद और दूसरा कौन बताया?
2: रतनलाल जी।
1: रतनलाल,
2: हाँ जी, ये बाजे की गाया करते दिल्ली से भी रात भी बाजे की।
1: चलो फिर हो सकता है उन्हीं का हो वो।
2: ठीक है,
1: ठीक है ना। ठीक है,
2: अच्छा
1: अच्छा अच्छा अच्छा ये तो बहुत पुराने हमारे जो सांगी हैं, ये क्या जासके है, हैं?
2: तो सने कतर है, रेडियो रखता हूं जी।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप जो श्रोता हैं वो हमको सुझाव दे हैं, हमने जो हमारे जो कार्यक्रम आपको हो ना बढ़िया लग गए, ये सब आपकी देन है। तो धन्यवाद बलवान जी,
2: धन्यवाद।
1: हेलो
3: हेलो
1: हेलो, नाम बताओ जी।
3: मैं
1: सुभाष जी, कैसे प्रोग्राम लगे हमने हमारे जो
3: प्रोग्राम में तो कोई कमी नहीं जी, मैं तो बचपन से ही रेडियो सुन रही
1: हूं। अच्छा,
3: लेकिन मतलब दिल तो दिल टूट गया जी, रोता किता है
1: ना, क्यों क्या तो तोड़ा दिल।
3: एक बार बताओ, टावर गिरे में मेरे ख्याल में साल तक ऊपर हो गया होगा।
1: हाँ,
3: आप जितने भी मतलब श्रोता आप चिट्ठी भेज रहे हैं या मतलब सुझाव भेज रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं इस समस्या में, पहले तो आपने कहा कर दे चल बे टावर लग जाएगा उसकी रेंज जमा करती रोहतक जो का रहेगा जी रेडियो
1: ना। देखो ईसा है सुभाष जी, ये सिर्फ आपका जिला कौन सा पड़े है?
3: मेरा तो जी जींद में पड़ा है, वैसे नरवाना के पास।
1: जींद में पड़ा है, जींद से आगे का जो एरिया है ना वहाँ के भी देखो कितने आप फोन सुन रहे होंगे, कितने हमारे जो श्रोता उनके फोन आ रहे
3: हैं। मैं सुनूं जी, मैं आपकी बात पे सहमत हूँ जी।
1: हाँ,
3: लेकिन उसके बाद चल रेडियो वाली देखी जावत, मैं तो रेडियो पे सुनू।
1: हाँ,
3: ऑनलाइन में भी आवाज एकदम जीरो आवाज है,
1: ये तो नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में तो पहले जिस टाइम टावर गिर रहा था ना उस टाइम भी ऑनलाइन से जो हमारी श्रोता वो जुड़ी रही थी।
3: आपने एक बार बताऊं जी, मैं जो अपने कुरुक्षेत्र है, हिसार है और स्टेशन है जितने भी,
1: हाँ
3: तो आपकी आवाज जमा मतलब आधी आधी से भी कम है रोहतक की, आप जांच करवा लो इस बार।
1: अच्छा, डाउन रह रही है।
3: हाँ मतलब थोड़ी कोशिश करो जी आप, मतलब एक निवेदन है आपका।
1: जरूर, नहीं निवेदन नहीं, कोई नहीं, आपका सुझाव है ये नोट कर लिया, मैं जरूर कहूंगा ये बात अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे।
3: अरे एक कोई धर्मवीर संगी की राग नहीं हो जी, पहलांगी कोई आप है
1: धर्मवीर संगी की? चलो कोशिश करते हैं, ये ढूंढेंगे और आपको सुनवाएंगे ये जरूर धर्मवीर संगी।
3: ठीक है जी,
1: ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो
4: हेलो, राम राम सुरेंद्र भाई।
1: राम राम, नाम बताओ।
4: पल्लाराम सागुन दे बोल जाएंगे।
1: नाम क्या बताया आपने?
4: पल्लाराम। कैसे हो?
1: बिल्कुल ठीक ठाक है, बरसात कुछ बनी है?
4: हाँ बढ़िया जी, बढ़िया जी,
1: चलो अच्छी बात है।
4: बहुत डिमांड से जी कई दिन की है जी।
1: हाँ बोलो।
4: पंडित मांगेराम का लिखा है जादू भी रात सांग, इसको सुनने की कोशिश करो।
1: ये आपने पहले कभी यहाँ से सुना है?
4: ये भमरा लक्ष्मीचंद को सुना है, राम राम मेले में
1: नहीं, वहाँ सुना आपने
4: जी।
1: देखो
4: जी,
1: जो सारे सांग है ना यहाँ रेडियो स्टेशन पे उपलब्ध नहीं है।
4: हाँ जी,
1: यहाँ रेडियो स्टेशन पे सारे जो सांग हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, अगर भाई इस कलाकार के हो और ये हो, ये संभव बात नहीं है।
4: अच्छा जी।
1: क्यों, जितने पहले जो ज्यादातर जो सांग हैं पहले के गाए हुए हैं, अब तो नए सांग बहुत कम हैं,
4: कम से जी हैं? कम हो तो पता जी।
1: तो उनको फिर लेना तो फिर मुश्किल हो जाए, जो उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, बताओ वो कैसे सुनवा सकते हैं।
4: ध्रुव भगत का सुनवा दो जी।
1: ध्रुव भगत का यदि यहाँ सांग हुआ तो जरूर सुनवा देंगे।
4: ठीक है जी, धन्यवाद।
1: ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो हेलो
0: हेलो
1: जी, नाम बताओ।
0: मेरा नाम शीख राम है जी, मैं कोयटा से बोल रहा हूँ, तहसील सफीदों जिला जी से।
1: जी जी, सिंह पाथरी दो रहे हैं।
0: हाँ
1: हाँ जी, शीख राम जी।
0: मनु भाई जी, आपके सारे प्रोग्राम ठीक रहते हैं।
1: अच्छा जी।
0: अच्छा, कई बार टावर में शिकायत भी हुआ है।
1: हाँ,
0: अगर कुत्ते नहीं आंदा
1: जी टावर की, देखो आज दो तीन शिकायत आई है।
0: फरमाशी लाने वहाँ जी बंद हो जाएगी।
1: अच्छा, फरमाशी में बंद हुआ है।
0: हाँ,
1: यह गलत बात है, फरमाशी में बंद हो। अरे देखो, हमने तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा तो फरमाशी कार्यक्रम, और जब इस समय हमारा बंद होगी तो मुश्किल नहीं होगी हमने तो।
0: देखो जी, मैं क्या बता सकूं, मैं तो 80 साल उम्र होगी। मन तो 50 साल हो गए रेडियो से।
1: बिल्कुल, देखो बहुत लंबे समय से आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हो।
0: 80 साल मेरी उम्र है, मैं तो इसके सारे दिन काट लिया
1: हूं। नहीं जरूर शीशराम जी, इसको ये जो सुझाव है ये सुन भी रहे हैं हमारे अधिकारी, और जरूर इसको हम नोट कराएंगे। जो आवाज है या जो इस तरह का
0: कार्य, मैं टेलीविजन देखता, मैं कुछ नहीं देखता, मैं रेडियो सुन रहा हूं।
1: बिल्कुल समझ गया शीशराम जी, ज्यादातर जो हमारा बुजुर्ग श्रोता है ने, वो रेडियो पे आधारित है, वो तो अपना रेडियो चला के उसी में मस्त रहे है उसमें, क्योंकि वो सारी हर तरह के जो कार्यक्रम है वो मिले हैं। टाइम पास हो जाए है, रेडियो में रागिनी भी हमने सुनने मिले हैं, समाचार भी सुने हैं, देश विदेश की बातें वो भी सुने हैं, फिल्मी गाने हैं, खेती बाड़ी संबंधी हैं, इसमें तो हर चीज का जो स्वाद है वो लिया जा सके है। रेडियो एक ऐसी चीज है, तो इसको हम जो आपका सुझाव है वो नोट कर लिया, मैं जरूर कहूंगा। चलो ठीक है, धन्यवाद शीशराम जी।
0: अच्छा जी।
1: हेलो
5: हेलो, सुरेंद्र भाई
1: जी,
5: मोलू बोलू जी, पनियार से।
1: मोलू?
5: हाँ जी, राजगढ़ रोड के ऊपर इछार से 15-20 किलोमीटर दूर गांव
1: पनियार से।
5: हाँ जी
1: हाँ जी, सुझाव
5: जो सुभाष कह रहा था, जो अभी वो बुढ़ा कह रहा था, ये बात सच्ची है सारी।
1: अच्छा,
5: रेंज कौन सा बिल्कुल सुसाट उठा रहा है, रेडियो हाँ। सुना ही है, फोन फान तो चलाने को नहीं आंदे।
1: हाँ।
5: रिशे का सारा टाइम पास करा, रिशे में उग चुक हो गया।
1: हाँ।
5: दिन में तो ये दो खेत खलियान आओ, उसमें इतना सुसाट उठा है कि मैं तो आजकल ये बिजली बाजली गए हो गए, क्यों जगह जगह से पार्किंग हो, उस वजह से चढ़ चढ़ करी जा।
1: इसमें क्या है मोलू जी, देखो ये तो पहले हम भी सुना करते कि मान लो कहीं जो ये इसकी लाइन वो है ना, इसकी बिजली की, उसके नीचे यदि हम रेडियो को करेंगे तो जो उसकी तरंग है ना वो कट जावे हैं।
5: वह तो है जी,
1: और अब जो थोड़ा है ना, जैसे टावर की हम बात करें, जो मोबाइल के टावर है यदि उनके नजदीक भी हम सुनेंगे तो उसमें भी फर्क आएगा, लेकिन जैसे
5: नजदीक
1: हाँ तो उसका हो सकता है कि थोड़ा बहुत असर इस पे आ रहा हो।
5: बेरन जिया जो गन्ना खराबी हुई थी टावर था, उसका बाद में है नहीं बलकना आते समझाता सुने करते हम तो इशारा वाला, फिर भी क्यों तो समझी से बेरे का था।
1: हाँ,
5: और यो था निश्चित है।
1: हाँ,
5: कम से कम 60-65 साल का हो गया, छोटा सा था जी, बूढ़ा था लोग मारे रेडिया ठट्ठा की सुन लग गया था, तीन चार रेडिये पड़े हैं मैं तो खराब हो गए, लेकिन सुनने का चाह सही बिल्ला रखा है।
1: जो ये आपने जो आपने मोलू जी आपने जो ये सुझाव दिया है इस पे पूरा विचार किया जाएगा आज। बिल्कुल नहीं, ये कहने की बात नहीं, बिल्कुल विचार करेंगे इस पे और करवाऊंगा।
5: प्रोग्राम सारे ठीक है, आप सुझाव दो कि मैं उपदेश मेरे से ज्यादा सुनाया करो कि मैं अब तक लगा देश का।
1: चलो ठीक है, धन्यवाद जी मोलू जी,
5: धन्यवाद बहुत।
1: हेलो हेलो,
6: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, नाम बताओ।
6: रामदिया
1: रामदिया टाक
6: है।
1: हाँ जी रामदिया जी, कैसे हो?
6: ठीक है जी सुरेंद्र।
1: हाँ बिल्कुल ठीक, सुझाव दो जी।
6: हाँ जी, आजकल आपने कृषि जगत सुनवाया थी, बहुत पसंद आया।
1: अच्छा
6: हाँ जी,
1: और
6: रागनी भी पसंद आई थी कल।
1: चलो अच्छी बात है, जो पसंद आया वो, लेकिन कोई कमी हो तो वो बताओ रामदिया जी, क्योंकि हमने पता लग जाना चाहिए ना।
6: कमी तो कोई नहीं सुरेंद्र जी, ये कार्यक्रम शुरू करो जी, रात वाला जी।
1: रात वाला कौन सा?
6: फरमाइशी कार्यक्रम दस बजे
1: जो फरमाइशी थारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाने जा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मेरे हम सफ़र, श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों को। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म सफर से मुकेश की आवाज को। गीत लिखा है इंदीवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

बेताब फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों को। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं दाग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। साहिर के लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

माफ़ कीजिएगा श्रोताओं, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दिल तुझको दिया से लता मंगेशकर की आवाज़ को। गीत और संगीत राजेश रोशन का है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म नूरी से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों को। गीत के बोल लिखे हैं जानिसार अख्तर ने और संगीत दिया है खयाम ने।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म चांदनी से लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों को। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया है शिव हरि ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं। जांबाज फिल्म से मनहर और साधना सरगम की आवाज़ों में गीत इंदिवर का लिखा हुआ है और संगीत दिया है कल्याण।

जी आनंद जी ने। वो कहते हैं कि जहाँ में तू मेरी जुस्तजू है तमन्ना भी तू और तू ही आरजू है चाहत भी तू और इबादत भी तू है ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है निगाहों में तू और सांसों में तू है कि तेरी जुस्तजू में जीऊँगा मरूँगा मोहब्बत करूँगा तो तुझसे करूँगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वदाली ब्रदर्स के गाए सूफियाना कलाम।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वदाली ब्रदर्स के गाए सूफियाना कलाम।

शाह अपने आप को कहते हैं भुलिया, रात को जागता है दिन पीर बनकर बैठ जाता है। अरे कुत्ते भी तो तेरे साथ सारी रात जागते हैं, तू पीर बनकर बैठ जाता, कुत्ते कुछ भी नहीं बनते। कुत्ता

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे वदाली ब्रदर्स के गाए सूफियाना कलाम। इस समय आप सुन रहे हैं

आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
6: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
7: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए

0: येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
4: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shrondipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
3: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
5: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
3: The Prime Minister said Dr. Mukherjee fiercely opposed the talk of two constitutions, two prime ministers and two flags in the country. He said Shyama Prasad Mukherjee understood very well that the essence of nation building is in the building of institutions. He said Dr. Mukherjee laid the foundation for such national institutions which became India's economic strength for decades to come. Union Home Minister Amit Shah participated in the 125th birth anniversary program of Shyama Prasad Mukherjee in Kolkata. We have more from a correspondent.
6: The whole nation is celebrating the 125th birth anniversary of Shyama Prasad Mukherjee. On this occasion, Union Home Minister Amit Shah joined a chain of events in Kolkata. Home Minister Amit Shah visited Shyama Prasad Mukherjee's ancestral home in Kolkata and paid his tribute. Before this, he participated

0: announced accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दूल्हा बिकता है के गीत। संगीत बप्पी लहरी का है। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अनवर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म दूल्हा बिकता है के गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, UPI, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमारम जी, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों के इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं। किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और WhatsApp द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट

0: कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
1: जी।
0: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है। थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फ़ोन करता हूँ।
1: ठीक है,
0: क्योंकि ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
1: जी,
0: रिटर्न कॉल नहीं होती,
1: सबसे बड़ी बात।
0: हाँ
1: जी, बिल्कुल।
0: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा थंब रूल है
1: जी।
0: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं
1: जी।
0: तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूरसंचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पर नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है। तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फ़ोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी। रवि,
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
2: हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त
0: करोगे,
2: इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए, डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है, नाइलेट NILIET नाइलेट है, और उस पर उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पर डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोमरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है
1: जी।
3: जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in से

0: एक साथ पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि देश में जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो एमएसएमई और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कि वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश है।
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के सासाराम से, अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हम कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं क्या, कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी
3: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजैक्शंस है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से, विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
4: सभी को नमस्कार
1: जी,
4: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए? दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
0: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करेंगे
0: आप?
1: गुड, गया शायद उन्होंने उनका
0: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ,
0: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुँचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुँचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी

0: एजेंसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए है।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
2: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार
2: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
2: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापड़ा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
0: शिक्षार्थियों मतलब विद्यार्थी
1: जी,
0: स्टूडेंट्स
2: जी,
0: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई 1,00,000 बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम, आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, IIMs के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देख कर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराते हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर, लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहाँ तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में है, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलो अप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
3: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
1: जी, बताइए।
3: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो। और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होके देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
4: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, WhatsApp और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफ़ेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या फीचर फोन से किया, उसका इफ़ेक्ट सेम है। जहाँ तक OTP और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फ़ीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए, अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पर एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर, मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
4: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
4: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे, वो जितनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
1: जी।
4: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है, वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
0: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा

0: अमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें। क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा इसका, जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
0: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको 0 FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात ज़रूर है कि चूँकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
3: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
3: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप OTP सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल न सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। AI के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSGtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: 40 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है अपने ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर कि जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो EV का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई-वेस्ट रिसाइकलिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
3: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
3: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का युग आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है।

0: और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
0: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जी भाई, ये इट्स नॉट ए वन डे कॉम्पिटिशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म। डोंट रन बिहाइंड द पैकेज, आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
3: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग SJ ग्रुप का काम किया।
1: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
3: बहुत कोशिश की है, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किया। फल दे नहीं दे लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
1: एक सुदूर गाँव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
3: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी

0: ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ।
1: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराई कला। सोहराई के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराई पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
1: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराई पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ और मादर की थाप गूंजती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारी जनजातियां कलाकारों विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
1: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
1: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
3: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
1: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
4: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारे ही एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारे ही एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
5: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक अकेडमी करती थी और इनका बेसिकली

0: अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिधि सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया है हमको, टाटा फुटबॉल अकेडमी को, फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कंसंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में, शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है TFA का।
1: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
0: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व्ड है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
2: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है, आशीष तानीपुरति, जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और उसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है। तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
2: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल, सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस RDC लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
3: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियाँ मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक

0: गुरुदेव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी आप सुन रहे थे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

कार्यक्रम मंचाय गीत सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपके दोस्त सुशील कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप हमें पत्र लिखते हैं और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रों को हम इस कार्यक्रम में शामिल करें और आपको सुनवाएं आपके पसंदीदा गीत। जो श्रोता हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हमें पत्र लिख सकते हैं। कृपया हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम मंचाय गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक, रोहतक का पिन कोड 124001 लगाना ना भूलें। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म पाकीज़ा से लता मंगेशकर की आवाज़ को। गीत के बोल लिखे हैं कैफी आज़मी ने और संगीत दिया है गुलाम मोहम्मद ने। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजिए आप सभी ने। आप हैं मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गौरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किनकुश खन्ना, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, चंद्रप्रभा वाड़ोदे, बलियाली भिवानी से आप हैं दर्शनलाल बंसल, सुदेश बंसल, प्रवीण बंसल, ममता बंसल, कमल बंसल, गर्विश बंसल और तमन्ना बंसल।

आप हैं शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, साजदा रानी, हिना कौसर, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगनानी, सुनीता जैन, इशदीप शर्मा, विनीता शर्मा, भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, और चौधरीबाज से राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रयाग, प्रियांशी, सुशीला। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कभी कभी से मुकेश की आवाज़ को। गीत साहिर का लिखा हुआ है और संगीत दिया है खयाम ने।

आप हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गुहानकर, सरिता गुहानकर, एकांश गुहानकर, सिद्धांत गुहानकर, प्रणीता गुहानकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली गुहानकर, सुमित गुहानकर, ध्वनि गुहानकर, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों को फिल्म नाच उठे संसार से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आप हैं गांव खैरका ज़िला सिरसा से इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन, कृष्णा पार्क से सुखविंदर सिंह जोड़ा, दौलत बाग मुरादाबाद से आप हैं जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अबासी।

पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, कासगंज से आप हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी। आप सभी सुनना चाहते हैं शराबी फिल्म से किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों को। गीत अनजान का लिखा हुआ है और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। इस समय रात के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

आर के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री

0: अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए तीन सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2008.